0: रोज रात 8 बजे सिर्फ CMR 101.3 FM टोरंटो।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
2: गोल्ड खरीदना है तो यह परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शंस पर स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795, 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com।
3: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: Tuned in to CMR at 8.
8: Dil se.
7: Ek ghanta behtareen music, dilchasp baate aur aapki apni community ke saath.
8: Har sham dil se.
9: Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. Sirf CMR 101.3 FM Toronto par.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: और मी नहीं चलेगा। वैम बैम थैंक यू मैम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड नहीं चलेगा।
1: लिसन मैडम, तो क्या चलेगा?

0: पर होना चाहिए,
1: खाली खाली थिएटर होना चाहिए,
0: मोटर बाइक पर जाना चाहिए,
1: अरे बार बार ब्रेक लगाना चाहिए,
0: हमेशा अलर्ट होना चाहिए,
1: थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट होना चाहिए,
0: लव होना चाहिए,
1: सब होना चाहिए,
0: रोमांस होना चाहिए।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर पेडी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसोर्ट नियर पेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
5: Listen to us around the universe, www.cmr.fm.

0: गोल्ड खरीदना है तो यह है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर शुरू हो गया है जून ज्वेलरी सेविंग्स प्रोग्राम। जून 5 से जून 21 तक वहाँ सभी हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट है। सेलिब्रेट लेजर कट 24th एनिवर्सरी विद स्पेशल प्राइजेस ऑन ऑल गोल्ड ज्वेलरी। विजिट एशिया गोल्ड एट 1510 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिकोक नियर किपलिंग एंड स्टील्स, और कॉल 4167463795 4167463795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। विजिट asiagolding.com। Looking for your next ride? Morningside Nissan पर ये है perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. जी हाँ, आपने ठीक सुना, 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. और फिक्र ना करें, हम सब credit types के साथ काम करते हैं, जिससे सबको approve होने का मौका मिल सके. Visit Morningside Nissan today and मिले AHA से, और call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर.
2: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवॉन्टेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 42। हीट वेव जारी है एंड स्टॉर्म्स पॉसिबल फ्राइडे मॉर्निंग यानी कल, एंड सनसेट होगा 9:03 पर। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 35 डिग्रीज टुडे, टुमारो 33, और फिर सैटरडे से थोड़ी सी राहत मिलेगी, 28 डिग्रीज। संडे इज गोना बी ब्यूटिफुल, 23 डिग्रीज, एंड प्रॉब्ली द रेन विल हेल्प अ बिट फ्राइडे और सैटरडे की। कई जगह कल भी थंडरस्टॉर्म्स शाम को देखने को मिले थे। लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट हैव पावर फॉर फ्यू आवर्स एक्चुअली, मोर सो ईस्ट की अगर हम बात करें तो, लेकिन ब्रैम्पटन में थिंग्स वर नॉट दैट बैड लकीली। एंड रोनाल्डो एंड पोर्चुगल टू फेस क्रोएशिया टुडे एट टोरंटो स्टेडियम इन राउंड ऑफ 32, 7 बजे। सबकी निगाहें रोनाल्डो की गेम पर हैं, और आमने सामने टोरंटो के स्टेडियम में होंगे पोर्चुगल एंड क्रोएशिया। एंड सैटरडे 1 PM कनाडा की गेम का इंतजार सबको होगा, स्पेन फेसिंग ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड टेक्स ऑन अल्जीरिया टुडे इन राउंड ऑफ 32 मैचेस। एंड बेल्जियम ने काफ़ी ज़बरदस्त कल कमबैक किया टू सील अ 3-2 विक्ट्री ओवर सेनेगल एंड एडवांस टू द राउंड ऑफ 16। यूनाइटेड स्टेट्स ने बॉस्निया को एलिमिनेट कर दिया, एडवांसेस टू द राउंड ऑफ 16 विद 2-0 विन, एंड अमेजिंग गेम्स देखने को मिली हैं। एंड इंग्लैंड ने कॉन्गो को 2-1 से हराया टू एडवांस टू द राउंड ऑफ 16। सो कैनेडा इज ऑलरेडी देयर इन दैट राउंड ऑफ 16। एंड गुरबानी से हमने दिन की शुरुआत की है, हल्ला बोल वॉज द फिल्म, इज ब्यूटिफुल से सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गुरबानी से हमने आज के दिन को सल्यूट किया है। थर्सडे का दिन है, होपफुली यू हैड अ ग्रेट कैनेडा डे। काफ़ी हॉट था, लेकिन परिवार के साथ जो है, हीट हो कोल्ड हो डजेंट मैटर, इफ़ यू आर विद द फैमिली यू गेट टू इन्जॉय दैट मोमेंट। और कैनेडा डे को बड़े धूमधाम से जो है हर जगह मनाया गया, एंड ऑल्दो ऑलवेज व्हेन देयर इज अ हॉलीडे इन दिस रिस्पेक्ट, कुछ ना कुछ खबरें भी इस तरह से आती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट रिलेटेड खबरें हों या फिर यू नो दिस थाउजेंड्स इन द डार्क आफ्टर द सिवियर थंडरस्टॉर्म रोल्स थ्रू नॉक्स डाउन पावर लाइंस। बेरी में, बेरी से ये कल खबर आई थी, एंड सो यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर रिपोर्टेड। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है, और राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30+ लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, ज़बरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, एंड इन GTA, बियॉन्ड GTA, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे बहुत जल्द, एंड उनसे भी करेंगे बातचीत। सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30 के बीच फ्री सेमिनार होता है, आपने अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग 905-206-1008, 905-206-1008। कैनेडा डे हीट सेट्स रिकॉर्ड विद अ हाई ऑफ 35.9 डिग्रीज जो रीच किया, एंड हीट वार्निंग इशू कर दी गई है फिर से एनवायरनमेंट कैनेडा में, विद स्वेल्टरिंग कंडीशंस एक्सपेक्टेड टुडे थ्रू फ्राइडे। एंड सिटी जो है, टोरंटो सिटी डिप्लॉय कर रहे हैं मोबाइल वाटर ट्रेलर्स, ओपनिंग हंड्रेड्स ऑफ कूलिंग स्पेसेस क्योंकि टेम्परेचर्स को मद्देनजर रखते हुए। एंड सिटी ऑफ टोरंटो ने एक्सटेंड किया ऑपरेटिंग आवर्स एट 8 पूल्स टू हेल्प रेजिडेंट्स बीट द हीट, सो यू कैन इन्जॉय दैट विद द फैमिली एज वेल इन टोरंटो या जहां जहां पे भी आप रहते हैं। बहुत ही छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।
2: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare wayneautogroup.com.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
9: Good afternoon, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

0: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Your Care, McVean Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Win Lifetime Trading. Shuru karte taza tareen headlines. Open AI ne US government ko 5% stake dene ke offer ko consider kiya hai. Donald Trump ne pichle saal apni $1 billion fortune banai through crypto, golf clubs and watches. US flash floods mein Indian techie ki maut hui after car gets swept away. 33 साल के वेंकटेश ह्यूस्टन से कैंसर्स की ओर जा रहे थे. चाइनीज फर्म ने हाइपर रियल रोबोट सेल किए इक्विप्ड विद आई कैमरास, चेस्ट सेंसर्स एंड लिसनिंग माइक्रोफोन्स. इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल साइज्ड अल्ट्रा रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड डिजाइन फॉर मास प्रोडक्शन. सिटीजनशिप सेटबैक के बाद डेपोटेशंस को एक्सपेडाइट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बार डेटा पर रिलाय करेंगे. एंथ्रोपिक ने क्लाउड साइंस एआई प्लेटफॉर्म को अनवील किया फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डिप्लोमैट के अनुसार दोहा में यूएस ईरान टू होल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स विद मीडिएटर्स. बुल्गेरियन मिनिस्ट्री के अनुसार टेल अवीव फ्लाइट पर ग्लिच कॉज्ड फॉल्स हाईजैकिंग अलार्म. और स्पेन ने जून में 1000 से ज्यादा हीट रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट की हैं. लोकल समाचारों में ओंटारियो में इन्वेसिव वाइल्ड पिग्स को ट्रैक किया जाएगा बाय ड्रोन्स विद थर्मल कैमरास. कनाडा डे पर हीट वेव का कहर जारी रहा. हैमिल्टन के पास साइड रोड पर साइक्लिस्ट फाउंड डिसीज्ड. मेट ऑफिस के अनुसार ओंटारियो की लेटेस्ट हीट वेव में डेंजर बना ड्यूरेशन, नॉट द इंटेंसिटी. न्यू ओंटारियो टेनेंट एयर कंडीशनिंग रूल्स कम इन टू इफेक्ट एंड एक्सट्रीम हीट के चलते नेथन फिलिप स्क्वायर कैंसल्स फीफा वॉच पार्टी. स्कारब्रो स्टैबिंग सेंस टू टू हॉस्पिटल. भारतीय समाचारों में विक्रम 1 इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट सेट टू लॉन्च बाय 4th August. एंड मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर, दिल्ली विल सपोर्ट इट. मुंबई ट्री कलैप्स मामले में मारे गए बच्चे के परिवार ने कहा क्रिमेटेड हिम विद हिज क्रिकेट बॉल. सिविक नेग्लिजेंस पर उठे कई सवाल. हैदराबाद और यूएई बेस्ड फर्म्स ने पार्टनर किया टू ब्रिंग फिजिकल इंटेलिजेंस टू इंडिया. एनालिस्ट के अनुसार पंजाब के पॉलिटिकल इश्यूज के लिए सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स इनफ नहीं होंगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैश स्कीम्स का रुख किया टू बेनिफिट पीपल. अखिलेश यादव को बर्थडे पोस्टर पर लॉर्ड कृष्णा पोर्ट्रे किया गया, बीजेपी ने अपॉलोजी की मांग की. और कैबिनेट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,115 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है. 8.1 किलोमीटर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा विद टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ 6,970 करोड़ रुपीज. व्हाट्सएप टू ब्रिंग न्यू यूजर आईडी फीचर, केंद्र को डर है ऑनलाइन फ्रॉड्स कुड गो अप. एंड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर टेक्स चार्ज एज द सदर्न कमांड चीफ. उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की हत्या के मामले में शख्स को सजाए मौत सुनाई गई. एंड वीक मानसून ने खरीफ क्रॉप्स को इफेक्ट किया, सोइंग ऑफ राइस एंड पल्सेस सीज शार्प ड्रॉप. पाकिस्तान की खबरों से पीएम शरीफ टू अटेंड अली खमेनीज फ्यूनरल इन ईरान. फॉरेन ऑफिस के अनुसार यूएस ईरान निगोशिएशंस को फैसिलिटेट करते रहेंगे. दूसरी ओर इंडस वाटर्स पर पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई, बोले वर्ल्ड ऑर्डर कलैप्स हो जाएगा. इस ट्रीटी का फ्यूचर ही तय करेगा द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वर्ल्ड वाइड. पाकिस्तान और इंडिया ने लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया. लिस्ट इंक्लूड्स सिविलियन डिटेनीज एंड फिशरमैन हेल्ड इन बोथ कंट्रीज. पाकिस्तान ने 250 कैदियों की डिटेल्स शेयर की है. डिप्लोमेटिक मिशंस के जरिए लिस्ट ऑफ वर एक्सचेंज्ड एंड एक्सरसाइज हेल्ड अंडर 2008 बायलैटरल एग्रीमेंट. पाकिस्तान ने इंडिया को स्लैम किया फॉर स्पॉन्सरिंग टेरर ग्रुप्स इनसाइड अफगानिस्तान. पाकिस्तान का कहना है कि अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए हम लगातार मेजर्स लेते रहेंगे. इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस रिजीम को वायलेट किया. सिक्योरिटी कलेबोरेशन को बढ़ावा देने मोहसिन नकवी पहुंचे सऊदी अरब. पाकिस्तान और KSA एक्सपेक्टेड टू डिस्कस सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन. इंटरनल सिक्योरिटी और एंटी नार्कोटिक एफर्ट्स पर भी होगा फोकस. बलूचिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के 4 ड्रोन्स मार गिराए. और लाहौर ट्यूशन सेंटर रूफ कलैप्स में पुलिस ने जांच के ऑर्डर्स दिए, कहा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस. स्पोर्ट्स जगत से फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हराया. बेल्जियम बीट सेनेगल 3-2. यूएस बीट बॉस्निया 2-0. फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में आज स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया और स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया खेले जाएंगे. कनाडा प्लेज मोरक्को ऑन सैटरडे एट 1 PM. बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट के बाद हैरी ब्रुक्स बन सकते हैं इंग्लैंड के अगले कप्तान. आइसलैंड क्रिकेट ने कहा नाइट क्लब्स, बीचेस एंड पुलिस स्टेशंस देखने को मिलेंगे और भी ज्यादा. बॉलीवुड खबरों से, रणवीर सिंह ने धुरंधर की जापान रिलीज का ऐलान किया एंड कॉल्स इट द बिगेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम. प्रभास ने आलिया भट्ट के अल्फा ट्रेलर को अमेजिंग एंड प्रॉमिसिंग बताया. दूसरी ओर फिल्म काला हिरन के प्रोड्यूसर अमित जानी ने रिएक्ट किया आफ्टर दिल्ली हाईकोर्ट एडजर्न सलमान खान प्ली टिल जुलाई 6th और कहा 8,000 सिनेमा हॉल्स में फिल्म को रिलीज करूंगा. चेस्ट कंजेशन की शिकायत के बाद एस कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस हॉस्पिटलाइज, बाद में रिहा किए गए. और दूसरी तरफ यश की फिल्म टॉक्सिक के टीजर में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा एंड हुमा कुरैशी आई नजर. प्रियदर्शन ने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ अपनी 9th फिल्म को कंफर्म कर दिया है आफ्टर हेरा फेरी 3 एग्जिट. एंड डायरेक्टर कुणाल कोहली ने डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा को बेस्ट फिल्म बताया. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल. बाहर का तापमान दिख रहा है 33 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 42. गीत संगीत का कारवां चलेगा. आपकी जो रिक्वेस्ट है मेरी उम्र के नौजवानों, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में गीत को हमने लाइनअप कर दिया है. एंड द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन, जॉर्जटाउन, दो लोकेशन से सर्व करते हैं. और इस हीट वेव में नेम ब्रांड सनग्लासेस पर भारी डील मिल जाए, जबरदस्त डील मिल जाए, यू जस्ट कैन बीट दैट. और उसके लिए आपको पहुंचना है कहां? आपको पहुंचना है क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा पर. एंड गीत बिल्कुल रेडी है, आते हैं बहुत ही जल्द वापस. और फिर आगे चलकर हमारे साथ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी भी होंगे, एज वेल एज वी विल टॉक टू मोहम्मद साहब फ्रॉम विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग. ओम शांति ओम का गीत एंजॉय करें किशोर कुमार साहब की आवाज में.
1: hey! तुमने कभी किसी

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Welcome back, friends. Ek baar phir se aapka swagat hai South Asian Unlimited Radio par. And Win Lifetime Trading se Mohammed Saab hamare saath hain. Aur yaad rakhein, dosto, the free seminar aapke liye specifically ye design kiya gaya hai Sunday afternoon. 12:30 se 3:30 baje. Aapne call karke apni seat zarur reserve karwa leni hai. Please don't walk in. 905-206-1008. Is segment ko dhyan se sune. Baki Mohammed Saab batayenge ki Win Lifetime Trading pe kya hota hai, kaise hota hai aur kyun hota hai. Mohammed Saab, aapka swagat hai.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी. जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें, एक ऐसे

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कार्ना, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्जटाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरिकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल स्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज दैट दे हैव इन द रेंज ऑफ 700,000 and 800,000 इन ब्रैम्पटन, इन GTA, Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707, या 416-627-4737। And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, जो कि 30+ locations से serve करते हैं 100% pure vegetarian food, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम Rajdhani Sweets and Restaurant। क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883. रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी, 647-866-1086, 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।
4: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
5: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
4: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
6: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905-457-3232, Clear Optical by Varun Kanda.

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। आठ

काल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्बन कोर्ट इन ब्रैंटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info। You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 33 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, फील्स लाइक 43। इट इज सिंपली हॉट, सो हीट वेव है, एक्सट्रीम हीट है। सो मेक श्योर दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड स्टे इनडोर्स इफ पॉसिबल। बाकी यू नो लिक्विड्स, वाटर, नथिंग लाइक वाटर, कैरी इट एंड यू नो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कल भी टेम्परेचर्स तकरीबन मिड 30s तक पहुँचेंगे, 33-34 डिग्रीज, एंड देन सैटरडे से थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। हीट वार्निंग इशूड बाई एनवायरमेंट कैनेडा विद स्वेल्टरिंग कंडीशंस एक्सपेक्टेड थ्रू फ्राइडे। होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिलसी भी चटवाल हमारे साथ होंगे बहुत जल्द। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पे कैनेडा डे वाली सेल जो चल रही थी हैज बीन एक्सटेंडेड ऑल द वे टिल संडे, सो उसे उसका फायदा लेने के लिए पहुंच जाइए 801 बुवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बुवेड एंड चिकूसी इन ब्रैम्पटन। SP बालासुब्रमण्यम की आवाज बन गई थी सलमान खान की आवाज। हम आपके हैं कौन वॉज द फिल्म, राम लक्ष्मण का म्यूजिक, देव कोहली के लिरिक्स, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिल्म आया ऑन सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित। एंजॉय।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 647-866-1086, 647-866-1086, राज जोशी, नाम ही काफी।
5: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
6: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वाशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पिछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222, 416-265-2222, 2665 2222, 2665

0: जोशी।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना, वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040। दैट इज 6476280040।
1: यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, दो डेकेड का लंबा एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि अप्स एंड डाउन्स मार्केट के, समर्स एंड विंटर्स कितने देखे हैं, समझे हैं। एंड अक्सर आजकल ये बड़ा सवाल उठता है कि आज की मार्केट जो है किस तरह की मार्केट है, इज़ इट really favorable for first time home buyers? To an extent yes it is, but what about the sellers then? ye sawal bhi bahut baar uthta hai, kya karna chahiye kya nahi karna chahiye, Sarabjit Gill hame batayenge 6478872707 ya 416-627-4737। and I think always we need expert realtors to guide us, but at a time like this wo guidance sabse zyada zarurat padegi aur padti hai aur padti rehni bhi chahiye। Sarabjit ji aapka swagat hai।
5: थैंक यू सनी, एंड ए वेरी हैप्पी थर्सडे आपको और सभी सुनने वालों को।
4: जी आपको भी हैप्पी थर्सडे।
5: आई होप कि एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग द फीफा वर्ल्ड कप, काफी रौनक चल रही है हर तरफ।
4: बिल्कुल जी, आज आखिरी गेम, टोरंटो की आखिरी गेम वर्ल्ड कप स्टेज की गेम है, जहां पर रोनाल्डो को देखने के लिए हजारों हजारों लोग पहुंच चुके हैं टोरंटो में। एंड इट्स गोइंग टू बी क्रेजी एट 7 PM।
5: बिल्कुल, ही डिजर्व्स दैट। इतने हजारों लाखों की भीड़ में, सॉकर की इतने बड़े वर्ल्ड में, लेकिन अपना नाम ऊपर टॉप टेंस में रखना, ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है।
4: बिल्कुल,
5: एवरीबॉडी इज नॉट ब्लेस्ड लाइक दैट वे।
4: नो, यू एंड सीपीआर ब्लेस्ड। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आप लोग भी रोनाल्डो मेसी से कम नहीं है, जिस तरह से आप लोगों ने एक छाप छोड़ी है इन व्हाट यू गाइस डू। आप लोगों का जो प्रेजेंस है एज रियल्टर्स, you know, ये तो कहा जा सकता है कि you know, there is a lot of experience and एक integrity है जो आप maintain रखते हैं।
5: Thank you, आपने बहुत बड़ा comparison कर दिया, but for such a nice words, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। Thanks a lot and thanks to all the audience also, जिसके through आपके through रूबरू होते हैं उन सबसे और confidence बना।
4: देखिए, हमारी audience को सरबजीत ये पता है कि आपसे सब्जी बेचने वाला काम नहीं होगा, मतलब यू आर नॉट दैट रियल्टर दैट इज ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस येलिंग दैट दुनिया का सबसे बेहतरीन यही प्रोजेक्ट है, आज ले लो नहीं तो फिर कल तो दुनिया खत्म होने वाली है। सो दैट काइंड ऑफ सब्जी बेचने वाला काम ना आप लोगों ने आज तक किया है, और फ्यूचर में मुझे पता है आई कैन ईजिली गारंटी कि वो करोगे नहीं आप लोग। एंड आई थिंक व्हेन यू से समथिंग विद डिग्निटी और व्हेन यू से समथिंग विद कॉन्फिडेंस, वो चाहे आप जितना आराम से भी कहो, वो लोगों के दिमाग, जहन और दिल तक चीज पहुंच जाती है। यू अग्री विद दैट, राइट?
5: बिल्कुल, आई टोटली एग्री। एंड दैट रिफ्लेक्शन जब लोगों से मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ, और अभी एक घंटा पहले आई रिसीव्ड अ कॉल, दैट क्लाइंट आई सर्व्ड सम 13 इयर्स बैक, ठीक है, एंड दे गॉट इनटू सम डिसीजन एंड उसके बाद आई थिंक दे आर इनटू सम सिचुएशन। तो उनकी एक ही शिकायत थी कि भाई आप नहीं आते मिलने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैंने कि रियल्टर जो है वो इफ वन सर्विंग गुड, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, वी कैन हेल्प टू द फैमिलीज And individuals.
4: बिल्कुल।
5: But yes, ये शिकायत भी मैं लोगों से दूर करने के लिए बैठा हूँ कि I will be visiting them more often than before.
4: See, देखिए, पता क्यों? क्योंकि जो शोर शराबा कर रहे थे, ठीक है, टू ईच इज ओन, हर एक का एक अपना बिजनेस का स्टाइल होता है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि ऐसी मार्केट में शोर शराबा करने वाले अब नजर नहीं आ रहे, सुनाई नहीं दे रहे, एंड एंड में कौन सर्वाइव कर रहे हैं, वो लोग जो इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं किसी चीज के बारे में, जो कि आप होम लाइफ मिरेकल के सरबजीत गिल, सीपी चटवाल दोनों रखते हैं, और चाहे वो टाइम था या चाहे ये टाइम है या जो भी टाइम रियल एस्टेट का आएगा, लोगों ने घर भी खरीदने हैं, घर भी बेचने हैं, बट यू केप्ट यू नो दैट डिग्निटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अस, एजुकेटिंग द पीपल, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. आज भी यही मकसद है कि आपसे ये पूछा जाए कि बायर को क्या करना चाहिए, सेलर को क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो लिस्टिंग्स आप शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जुलाई 2nd है, वीकेंड सामने है, सो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग एंड चेकिंग आउट प्रॉपर्टीज दिस वीकेंड.
5: मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है, ये पल्स जो है मुझे हर लेवल के हिसाब से देखने मिल रही है. इवन अगर हम जून महीने की सेल्स देखें तो इट्स मोर देन 400 सोल्ड प्रॉपर्टीज है इन ब्रैम्पटन, खाली में ब्रैम्पटन इन बैंगलोर, विच इज अ काइंड ऑफ ए ग्रोइंग नंबर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑल्सो. एंड ये ग्रोइंग नंबर ऑफ सेल्स शो कर रही है कि पीपल कॉन्फिडेंस इज कमिंग बैक इन टू इट. ठीक है, एंड यस, जो कुछ भी और फाइनेंशियल डिसीजन मार्केट में इफेक्टेड है, ठीक है, मार्केट में एक चीज है कि बहुत सारे लोग सोचती हैं कि जब वो प्राइस बढ़ रही थी तो वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, या प्राइस कम हो रही है तो कम होती जाएगी. तो जैसे वो उस वक्त वैसी चीज ट्रू नहीं थी, वैसे ही ये वाली साइड जो है ये ट्रू नहीं है. वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ सम मंथ्स जब जहां से नया साल आने वाला है, और जो चीजें मार्केट में ऑलरेडी फाउंडेशन वाइज देखा जाए तो मार्केट इज इन ए हेल्थी पोजिशन फॉर बायर्स. यस, सेलर्स को समझेगा के ऊपर जो है वो लॉस है, इफ दे कैन एडजस्ट देयर लॉसेस समहाउ एंड दे कैन, दे आर स्टिल इन ए हेल्थी स्टेज टू टेक ए स्टेप. ठीक है, मैं अक्सर ये बात हर एक से करता हूँ कि अगर आपने हाथ में लोहा पकड़ा हुआ है और अगर आपके हाथ भरे हुए हैं तो सामने सोना भी आ गया तो आप पकड़ नहीं पाओगे.
4: बिल्कुल सही बात,
5: जब तक आप लोहा छोड़ोगे नहीं.
4: Yeah, exactly.
5: So just start seeing differently and you will see a different outcome for yourself and your family.
4: जी, बिल्कुल सही बात है. सेलर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, सेलर्स को इस पॉइंट पे फाइनली जो है should if they really want to sell their properties and for the last one year wait कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए?
5: देखिए, एक प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि the personality was the woman was trying to sell it for close to 1.8.
4: जी,
5: but वो I think they came to know that कि market में price 1.8 नहीं है. Ultimately they I think sold something little closer to 1.4. ठीक है, तो अब अगर यही decision वो 1.8 जब उन्हें last year market में आए थे उसी वक्त अपने decision को immediately correct कर लेते तो शायद वो 1.6 पे चले जाते. So, जैसे मार्केट फास्ट चेंज हो रही है, हमें भी उतनी फास्ट अगर हम अपने डिसीजन, इफ वी आर आउट इन द मार्केट टू रियली सेल, ठीक है, देन यू हैव टू टेक सम अग्रेसिव डिसीजन. यू कैन सिट विद योर रियल्टर, डिस्कस इट आउट. इफ यू आर नॉट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इन एनी ऑब्लिगेशन, यू कैन कॉल अस ऑल्सो.
4: बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि सिट अपने रियल्टर के साथ क्यों करना है, अगर आप अपने रियल्टर को ही सरबजीत गिल, सीपी चटवाल को ही अपना रियल्टर बना देते हैं तो फिर उन्हीं के साथ बैठिए, उन्हीं के साथ सलाह मशवरा करिए. एंड व्हेन आई से दिस, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि एक्सपीरियंस गोज अ लॉन्ग वे, और क्योंकि जिस एक्सपीरियंस्ड रियल्टर ने काफ़ी कुछ देखा है, समझा है, परखा है, उसकी सोच बहुत डिफरेंट होगी. लास्ट इवनिंग ऑल्सो आई वॉज यू नो एट अ सर्टन पार्टी जहाँ पर मैं किसी से बात कर रहा था और एक इनएक्सपीरियंस्ड रियल्टर से बात कर रहा था. नथिंग रॉन्ग विद दैट. पॉइंट ये है कि आपको पता चल जाता है कि इन डेप्थ नॉलेज बंदे को कितनी है, किस तरह से वो मार्केट को देख रहा है, समझ रहा है. सरबजीत जी का नंबर 416-627-4737 416-627-4737. सरबजीत जी, जाने से पहले क्विकली मैं आपसे कुछ लिस्टिंग जरूर चाहूंगा कि आप शेयर करें.
5: देखिए, मेरे पास दो बहुत प्यारे डिटैच घर हैं, ठीक है, एंड दोनों ही बहुत मोटिवेटेड सेलर्स हैं. ठीक है, वन वी कैन मेक अ डील इन एंड अराउंड 700,000 एंड वन वी कैन मेक अ डील लिटिल अबव 700,000. ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टीज में जो है वो स्ट्रेंथ है. वन हैव ए लीगल बेसमेंट एंड ऑलरेडी बी रेंटेड आउट फॉर 1400. ठीक है, एंड आपकी जो ये पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी भी बन सकती है. वी कैन सिट टुगेदर एंड टॉक इट आउट. ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत जबरदस्त लोकेशन इन ब्रैम्पटन है. Nobody can beat that location, and it's kind of a fantastic properties and opportunities, especially who's a first time buyer or even who is a kind of a investor who understand the market and they know their growth. So call me 416-627-4737 या CP Chhatwal ji को 647-887-2707.
4: जी बिल्कुल दोस्तों, एक कॉलर है, अगर मैं क्विकली उनसे, आप ऑनर है, कोई सवाल पूछना है आपने सरबजीत से
0: या फिर आप
4: अगले कॉलर को, आप ऑनर हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? ओके, आई थिंक सरबजीत जी की लाइन मुझसे ड्रॉप जरूर हो गई है. यहाँ पे आप सरबजीत गिल से संपर्क कर सकते हैं 416-627-4737 पर 416-627-4737. एंड आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब की आवाज में चुरा लिया है तुमने बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, जिससे आई एम गोना से गुड बाय एंड आई विल सी यू टुमारो एट 12 ऑन साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940. टिल देन गुड बाय. And God bless, ladies and gentlemen.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं खुश शुमानी आपके साथ, और मेरे साथ हैं आमिर, और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिसनर्स। और है थर्सडे की बड़ी खूबसूरत सी हीट वेव्स लिए हुए ये प्यारी प्यारी सी आफ्टरनून। मेरे सामने टेलीविजन है जिस पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, महसूस किया दिखाई दे रहा है हीट वार्निंग इन इफेक्ट। और कल शायद थोड़ा सा आमिर मौसम में तब्दीली आएगी, हल्की सी तब्दीली आएगी, लेकिन जिंदगी में भी ऐसा होता है, मौसम के साथ साथ कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ टेस्टिंग पल होते हैं, और इसी के साथ हम और आप साथ में चलते रहते हैं। नंबर टू कॉल 416-303-3639, 416-303-3639 इज अ नंबर टू कॉल। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम।
3: जी शिवानी, आज वाकई मौसम बहुत अच्छा है। कल दिन भर मौसम बहुत परेशान कुन रहा, और शाम में काली घंघोर घटाएं बिल्कुल आपके बालों जैसी थी वो आ गई, और बादल थोड़ा बरसा भी, और अच्छा। हवाएं थी, शुक्र है गलत फहमियों की नहीं थी, बड़ी अच्छी चली, और उन्होंने मौसम को अचानक बहुत खुशगवार कर दिया।
5: बिल्कुल सही, और ऐसे ही अच्छे अच्छे से गानों के साथ, हमारे स्पॉन्सर्स के मैसेजेस के साथ जो आपके बहुत काम आते हैं हरदम, आप बने रहिए हमारे साथ पूरे 3 बजे तक।

0: और साहब बात करते हैं प्रोग्राम के शुरू में ही आपको मिलने वाली ग्रांट के बारे में. दिन बहुत कम रह गए हैं. यू गॉट टू बी क्विक. यू हैव टू मेक योर डिसीजन. दिस इज ओरिजिनल. दिस इज जेन्युइन. दिस इज हैपनिंग. पीपल आर गेटिंग फंडिंग. लोगों को पैसा मिल रहा है वेरी थिक एंड फास्ट एवरी सिंगल डे. कभी 15 लोग, 18 लोग, 20 लोग ग्रांट ले रहे हैं. और आपको बता दें कि 70,000-80,000 डॉलर मिलेंगे, जिसमें से आधी ग्रांट होगी जो आपको लौटानी नहीं है, वापिस नहीं करनी है, और आधा लोन होगा जो इंटरेस्ट फ्री होगा. दिलाएगा कौन? नागपाल जी, वेलकम करते हैं आपको.
1: थैंक यू वेरी मच. सभी को सलाम हमारी तरफ से.
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वक्त बहुत कम रह गया है, तो डिसीजन के हवाले से बताइए कि हाउ क्विकली शुड पीपल मेक अ डिसीजन टू एनरोल.
1: सिर्फ 15 दिन रह गए हैं जी. 15 days, that's it.
0: अच्छा,
1: आज आपको गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम करके तालीम हासिल करते हैं आप, हुकूमत से फंडिंग लेते हैं आप, हुकूमती फीस पे करती है कॉलेज की, आपकी जेब से कुछ नहीं गया. ऑन अदर हैंड आपके अकाउंट में फंडिंग आती है 30,000 to 100,000 डॉलर की फंडिंग होती है, जिसका हाफ पोर्शन तो ग्रांट है. ग्रांट आज की डेट में 15 दिन बाद एनरोल करेंगे तो लोन ही सुनेंगे आप हमारे से.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक. यहाँ नंबर है नागपाल जी का नंबर, ये नंबर मिलाएंगे आपको ग्रांट मिल जाएगी. 4372643175. किसके लिए है ये ग्रांट? कौन अप्लाई कर सकता है? कौन एलिजिबल है?
1: आपको जो सुन रहे होते ज्यादातर वो PR, citizen protected person तो होते ही हैं. और वो स्कारब्रो में ही होते हैं, ओंटारियो में पार्टी होते हैं, ओंटारियो में होते हैं.
0: अच्छा, बिल्कुल सही.
1: और मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली इनकम जिनकी कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे less than $70,000 है. किसकी होती है वो? ऊबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे और हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, इन लोगों को बेनिफिट है. कोई एज लिमिट नहीं है. आपसे 75 के पेंशन पे आप एलिजिबल हैं, आपसे 30 ईयर्स के आप एलिजिबल हैं. आप तालीम हासिल करते हैं मैनेजमेंट के, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्स घर के कंफर्ट से करते हैं, और आप हुकूमती फीस पे करती कॉलेज की, हुकूमती आपको आपके अकाउंट में मुकम्मल फंडिंग देती है 30,000 to 100,000 डॉलर की, जिसका हाफ पोर्शन ग्रांट है. डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज फंडिंग वेरी करती है. अगर आपके बच्चे ज्यादा है आपकी ज्यादा फंडिंग बन जाती है. फैमिली ऑफ फाइव की अप टू 100,000 की फंडिंग भी बन जाती है, सीधा उनके खाते में आती है. उसमें से 50,000 तो आज की डेट में ग्रांट है सर. गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है नेक्स्ट अकेडमिक सेशन से. 1 अगस्त के बाद पॉलिसी चेंज है गवर्नमेंट की. ग्रांट नहीं, लोन आएंगे. लोन तो हमारे ऊपर पहले से इतने, और क्यों लेंगे आप? हम कोई और फंडिंग में डील ही नहीं करते. इसमें एक कुंडी होती है, कैच होता है. सारा ओरिजिनल काम है, एंड टू एंड. कोई इसमें हिडन चीज है ही नहीं.
0: बिल्कुल सही. यहां नंबर है 4372643175. मान लीजिए किसी के पास PR है या प्रोटेक्टेड पर्सन है वो, या पासपोर्ट है उसके पास कैनेडियन, और घर में बैठा हुआ है, खवातीन है, घर का काम काज कर रही हैं और कुछ नहीं उनके पास रोजगार वगैरह, बाहर लोग टैक्सी वगैरह या छोटा मोटा उबर चला लेते हैं, क्या उनके लिए भी रीजनेबल है ये?
1: बिल्कुल जी है. इतने ही लोगों की हम ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं. हमने काम शुरू नहीं करा, 8 साल हो गए हैं. बहुतों को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं. हमारे पास आप मान के चले सिंगल मदर विद 3 किड्स भी आते हैं, जब काम होता है ब्लेसिंग भी देते हैं लोग हमें.
0: अरे वाह,
1: साल में बहुतों को असिस्ट कर चुके, बाल सफेद हो गए काम करते हुए. कोई कुंडी नहीं है इसके अंदर. आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं? आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, दैट्स इट. कोई घर के कागज नहीं लगते. बैंक से लोन नहीं ले रहे आप, गवर्नमेंट से ग्रांट ले रहे हैं. लोन नहीं कहूंगा, ग्रांट ले रहे हैं. आज की डेट में ग्रांट ले रहे हैं. आसान से कोर्स करते हैं, और लाइक फुली ऑनलाइन कोर्स है. गवर्नमेंट आपका देश का पैसा $60 बिलियन बाहर दे देती यूक्रेन को बिना किसी क्रेडिट चेक के. तो गवर्नमेंट के आपको $70,000 की फंडिंग ऐसे बिना क्रेडिट चेक की नहीं दे सकती क्या?
0: बिल्कुल सही.
1: नहीं है कोई क्रेडिट चेक नहीं है इसमें. कॉल करें, असेसमेंट कराएं. हमारी फीस छोटी सी है, $199 या $499. काम होने के बाद देनी है. पिछले हफ्ते 29 बंदों की फंडिंग गिरी, उनके अकाउंट में 25 के पैसे आ गए. 4 के पीछे हम भाग रहे फोन कर करके बारी बारी. कोई इसमें मतलब आपकी ईमानदारी चेक हो रही, हमारी नहीं हो रही.
0: बिल्कुल सही.
1: मतलब हमने बिल्कुल एंड टू एंड सब ठीक रखा है. प्रॉपर ऑफिस है, मॉडल में नहीं मिलते. कॉल करें, ऑफिस आए 218 एक्सपोर्ट बोलर मिसागा में. नंबर नोट करें 4372643175. 437-234-3175 अभी कॉल करें, एस्टीमेट ले अपना, आप ना आपकी फंडिंग बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, बट फाइल ऐसी लगाएंगे कि काम हो जाएगा और
0: हो जाएगा,
1: आपकी बन जाएगी।
0: बिल्कुल सही,
1: 437-234-3175
0: 437-264-3175। बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना
4: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल, शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर। 6476477-997-7224।
5: जी आपने बिल्कुल सही सुना, और कहते हैं कि जो जिंदगी है वो एक फिंगरप्रिंट है हमें
0: जी।
5: लाइफ इज अ फिंगरप्रिंट, जिसे हम हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं,
0: अलग-अलग
5: और वो डुप्लीकेटेड भी नहीं हो सकते। सो लाइफ इज अ फिंगरप्रिंट दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, सो मेक द बेस्ट इंप्रेशन विद इट, लिव इट, लव इट एंड डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ। लेकिन क्योंकि टाइम हैज नो हॉलीडेज, ड्रीम्स हैव नो एक्सपायरी डेट एंड लाइफ हैज नो पॉज बटन, जिंदगी को हम पॉज नहीं कर सकते। आज जिंदगी इस्तेमाल नहीं कि कल बोनस के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जब एक ही जिंदगी मिली है तो उसको अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और स्पेशली जब बच्चे हमारे होते हैं जो हमारी जिंदगी इटसेल्फ होते हैं, तो उनके लिए तो हम खास तौर पे ऐसा लगता है कि जितना करते हैं उतना ही कम है। लेकिन क्या करें, कैसे उनकी फ्यूचर को सिक्योर करें, और उसके लिए हमारे साथ एक जाना पहचाना नाम हर हफ्ते हमारे साथ थर्सडे को जुड़ती हैं, शबाना हसन, और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर जुड़ चुकी हैं। शबाना, वेलकम टू रेडियो टोरंटो कनाडा, कैसे हैं आप?
6: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हेलो एवरीवन।
5: हेलो जी, और शबाना आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज हम RESP के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आप मुख्तलिफ जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूरी स्पेशलाइजेशन रखती हैं, हम आपसे अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं, आज हम RESP के बारे में बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली जो नए लोग आए हैं, कि यहाँ तो स्कूल फ्री है, स्कूल में हमें फीस नहीं देनी पड़ती है, तो अभी से डालने से कॉन्ट्रीब्यूट करने से क्या फ़ायदा है। उनको ये नहीं पता कि जब स्कूल के बाद की जो लाइफ होती है बच्चों की, वो कितनी एक्सपेंसिव होती है पढ़ाई के हवाले से। तो एज एन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है RESP और हाउ डज इट वर्क।
6: ओके, सो RESP जो कि जिसे रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग्स प्लान कहते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट होता है, क्योंकि बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहां से एजुकेशन का कॉस्ट जो होता है वो एकदम बढ़ जाता है
5: जी।
6: तो अगर हम जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, अगर उस वक्त से हम RESP के अंदर कंट्रीब्यूशन करें, RESP की जो लिमिट है वो 50,000 है फॉर ईच किड, उसके अंदर कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट जो है वो 7,200 है
5: जी।
6: और कनाडा लर्निंग बॉन्ड ईच किड $2,000 है, विच इज फॉर दोज पीपल दे हैव अ लो इनकम थ्रेशोल्ड, जैसे $55,000 से $60,000 तक अगर फैमिली इनकम है तो उनको कनाडा लर्निंग बॉन्ड मिलता है।
5: अच्छा।
6: तो वो सारे पेरेंट्स जिनकी इनकम इससे कम है, अगर वो अपना RESP अकाउंट अपने बच्चों के लिए ओपन करते हैं तो राइट अवे गवर्नमेंट उसके अंदर $500 डिपॉजिट करती है। ठीक है, उस पर उसके लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम एक साल में जो लिमिट है ग्रांट लेने की वो 2,500 है, उस पर $500 का आपको ग्रांट मिलता है। अगर आप वो नहीं अवेल करते तो वो आपका साल जो होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। कैचअप कर सकते हैं, अगर आप लेट से आपका बच्चा 5 साल का है या 10 साल का है, तो आप इस साल एक साल है पिछले एक साल को कैचअप कर सकते हैं।
5: अच्छा, अच्छा।
6: और यानी 5,000 मैक्सिमम आप एक साल में डाल सकते हैं। तो बार दफा लोग मुझसे पूछते हैं, आई हैव $50,000 तो क्या मैं डिपॉजिट एक साथ कर दूं? तो उस पूरे डिपॉजिट पे आपको एक साथ ही नहीं मिलेगा कनाडा लर्निंग बॉन्ड या कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट, उसके लिए आपको 5,000 की लिमिट होती है।
5: ठीक है,
6: उस पर आपको $1,000 का मिलता है। तो इसलिए कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका मकसद ही RESP खोलने का ये है कि आप $7,200 उसमें लेने जा रहे हैं, अदरवाइज आप किसी और अकाउंट में भी अपनी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
5: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक अगर एज एन एक्सपर्ट आप हमारे साथ जुड़ी हैं आज शबाना, तो आपसे ये जरूर हम जानना चाहेंगे कि आप क्या टिप देना चाहेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपका नंबर हमारे लिसनर्स को जरूर दे दूं, क्योंकि आपकी बातचीत सुनने के बाद डेफिनेटली उनको इस नंबर की जरूरत पड़ेगी और आप शबाना से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू के बाद सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। और मैं नंबर शेयर कर दूँ, नंबर है उनका जिन पर आप बात करें 6479977224 जी शबाना, बात कर रहे थे कि ऐसे क्या टिप है जो आप बच्चों के पेरेंट्स को देना चाहेंगी कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन में बच्चे जाते हैं उनके लिए कुछ फंड्स अच्छे सिक्योर हो जाएं और ये ब्राइट फ्यूचर हो उनका।
6: अच्छा, मैं बहुत सारी फैमिली से जब मिलती हूँ तो वो आमतौर पे कहते हैं कि जी हमारे पास सेविंग्स नहीं होती हैं, हम कहाँ से दें। तो आपने अपनी पॉकेट से तो नहीं देना, आप कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट जो बच्चों का मिल रहा है आप उसमें से $100-$200 बच्चों के लिए आप सेट असाइड कर दें कि उनके एजुकेशन प्लान में वो जाए। लेकिन मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ठीक है, मैं उसमें उसको मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो मेन गोल है वो 7200 का ग्रांट लेने का है। जैसे ही आप, अगर बच्चा बॉर्न बेबी का आपने स्टार्ट किया तो 13-14 ईयर्स पे जाके अगर आपने 35,000 अप्रोक्सीमेटली आप डिपॉजिट कर दिया, उस पर आपको $7200 तक का ग्रांट मिल जाता है। उसके बाद चाहें तो वो स्टॉप कर दें पेमेंट और अपना दूसरा TFSA अकाउंट ओपन कर लें।
5: अच्छा।
6: ताकि वहां पर बाकी की ग्रोथ करें। ये आमतौर पर लोग नहीं बताते, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा RESP अकाउंट होता है इसमें यह होता है कि जब बच्चा 18 ईयर्स का होगा तब आप इसको अवेल कर सकते हैं, इसकी ग्रांट, इसकी ग्रोथ और इसकी कंट्रीब्यूशन। लेकिन बिफोर 18 ईयर्स किसी वजह से आपने उसको अपनी आप चाह रहे हैं कि आप विड्रॉ करें तो आपको ग्रोथ और ग्रांट नहीं मिलेगी। तो जैसे ही आपके $7200 आपको आपने अचीव कर लिया, आपको मिल गए, आप चाहें तो वहां पर स्टॉप पेमेंट कर दें। क्योंकि याद रखें कि आगे जाके जो कॉस्ट है वो आपकी एजुकेशन की जो है वो बढ़ती चली जा रही है बच्चों के लिए, तो बेहतर है कि आप इस तरह की जो हम लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं तो उसमें ये सारे सिनेरियो बताते हैं। इसी तरह से जैसे अभी मुझसे रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने पूछा कि मेरी जो है वो इनकम बहुत ज्यादा है तो चाइल्ड बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं आता, तो मैंने उनसे कहा व्हाई नॉट यू ओपन RRSP अकाउंट, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो चाइल्ड बेनिफिट भी थोड़ा ज्यादा आने लगेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो मैं देती रहती हूँ। दूसरी बात, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपना RESP अकाउंट ओपन करते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर कुछ चार्जेस अटैच हैं। यानी आप विड्रॉ करते हैं बिफोर बच्चे के 18 साल होने से पहले तब भी आपको चार्जेस हैं, अगर आप स्टॉप कराते हैं किसी वजह से आप नहीं पे कर पा रहे तब भी चार्जेस हैं, जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है जब वो अपने एजुकेशन के लिए वो अवेल करते हैं सारे फंड्स उस वक्त भी चार्जेस हैं। जो हम लोग करते हैं या हम जैसे हमारी जैसी कंपनीज बाकी करती हैं उनके अंदर किसी भी तरह के चार्जेस नहीं है।
0: बिल्कुल ठीक।
6: अगर किसी वजह से आप स्टॉप करना चाहें पेमेंट अपनी तो आप स्टॉप करा सकते हैं। और ये भी याद रखें कि आने वाले वक्तों में उस ऐप जो आपको मिल रहा है उसमें आपका जो ग्रांट का पोर्शन है वो बिल्कुल कम हो रहा है। यानी 75,000 से अब गवर्नमेंट ने उसको 25,000 कर दिया, कमिंग फॉल से ही स्टार्ट हो रहा है।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है शबाना जी का, ये नंबर मिलाएंगे आप 6479977224। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, शबाना हसन को कॉल कीजिएगा, जरूर बात कीजिए इनसे, बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। 6479977224। बहुत शुक्रिया शबाना, आपसे फिर बात करेंगे।
5: थैंक यू शबाना।
6: थैंक यू। ओके बाय।

0: और साहब, जो इलाज जड़ी बूटियों के जरिए होता है, सबसे बेहतरीन बात होती है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सातवीं पीढ़ी हैं आयुर्वेदा में, कमाल के मुआलिज हैं। एक बार आपकी नब्ज पर हाथ रखेंगे, आपको बता देंगे कि मसले की नौयत क्या है। कमाल की शख्सियत और बेहतरीन रिजल्ट्स, आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग इस गर्मी में क्या यूज करें, क्या इस्तेमाल करें कि वो ठीक रहे?
1: भैया ये गर्मी में अभी इंडिया को गर्मी, हमारा इधर का गर्मी बहुत अलग है।
0: बिल्कुल ठीक,
1: इधर सूरज हमको नजदीक रहता है, इसलिए गर्मी ज्यादा होता है, स्किन में प्रॉब्लम होता है
0: जी।
1: इसलिए जाने के टाइम में जरूर स्किन में कोई भी स्किन क्रीम लगा के जाना, और ज्यादा ज्यादा पानी पी जाना, बाहर से कोकोनट वाटर वैसा वैसा कूल करने के वाला पीना, नहीं तो चास ज्यादा पीना पड़ता है। चास लस्सी बताता, लस्सी
0: बिल्कुल ठीक,
1: लस्सी ज्यादा पीना है। इस कारण से क्या होता है, हाइड्रेशन नहीं होता है, हमको बॉडी को कितना परसेंट पानी चाहिए वो पानी रख सकता है। जूस भी, फ्रेश जूस भी पीना पड़ता है, कूल ड्रिंक से थोड़ा कम पियो, फ्रेश जूस ज्यादा पियो, चास ज्यादा पियो, बाहर जाने के टाइम में थोड़ा प्रोटेक्शन रख दे तो अच्छा है।
0: बिल्कुल सही गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पर जो हमारे वकील दोस्त हैं या इंश्योरेंस में या मोर्टगेज में, उनके लिए डेडलाइंस होती हैं कि इस डेट से पहले पहले ये काम करना है, और इसमें वो अपना ब्लड प्रेशर बढ़वा लेते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है उनका। उसका क्या हल है, क्या सोचते हैं आप, क्या समझते हैं इस बारे में?
1: यस भैया, ये हम आजकल बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, उसको कारण क्या है, स्ट्रेस वगैरह से वो बढ़ रहा है। स्ट्रेस वगैरह से हमारा नर्वस को अंदर ताकत कम हो जाता है
0: जी,
1: इसलिए छोटा मोटा के लिए स्ट्रेस बढ़ जैसे, स्ट्रेस कारण से हमारा बीपी प्रेशर बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये प्रेशर, ये लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर दोनों में साइलेंट किलर है।
0: बिल्कुल सही,
1: लो पेशेंट साइलेंट किलर है, ये दोनों में शरीर को अंदर आ जाए तो एक एक एक एक पार्ट को, हमारा इनसाइड ऑर्गन को वीक करता है।
0: बिल्कुल सही,
1: तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, वो इलाज लिए तो ठीक हो जाएगा। ये इलाज सारा हर्बल से हम बनाता है, ये हर्बल सारा लेकर आके उसको सर्पगंधा, बिटारगंधा, वैसा महाब्रह्मी, वैसा जड़ी बूटी ऐसे करके मैं देता हूँ, प्रशांत होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, प्रेशर भी अंडर कंट्रोल में रहता है।
0: बिल्कुल सही, यहाँ है नंबर गुरुजी का, यही मिलाएंगे आप, एक बार बात जरूर कीजिए। बहुत गर्मी महसूस हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या बहुत लो हो गया है, लैक ऑफ एनर्जी है, तो ये नंबर मिलाए 4374383399। नंबर दोबारा बता रहे हैं, 4374383399। गुरु जी, लैक ऑफ एनर्जी यानी जिस्म में यूं लगता है जैसे ताकत ही नहीं रही है, शक्ति ही नहीं रही है, बिल्कुल बेजान सा जिस्म हो गया है, ऐसा कब होता है, क्यों होता है, और आयुर्वेदा इस बारे में क्या कहता है?
1: हाँ हाँ भैया, उसको आने को बहुत कारण होता है, हमारा मसल्स को अंदर ताकत कम हो जाता है, हमारा सेल्स बहुत अच्छा गुड सेल्स नहीं आता है, इसलिए खाना में थोड़ा ताकत कम हो जाता है, डाइजेशन कम होता है, हमको बॉडी के अंदर आयन का ताकत, विटामिन का ताकत कम हो जाता है, इसलिए बाहर देखने के लोगों बड़ा बड़ा दिखता है, अंदर से सारा वीकनेस हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, फैटी हो जाता है, फैट ज्यादा होता है, और सम पीपल्स को डाइजेशन में फैटी लिवर हो जाता है, इस कारण से बॉडी में बॉडी को वो हमारा खाना से अच्छे से प्रोटीन अच्छे ताकत हो नहीं ऑब्जर्व करता है, इसलिए बॉडी में वीक हो जाता है, टायर्डनेस हो जाता है, ये काम करके दूसरा काम करने का नहीं होता है, फास्ट फास्ट नहीं जा सकता है, लेजी हो जाता है, एक जगह में जाके जो वो उठने की जगह में भी थोड़ा वीकनेस हो जाता है, इस कारण से बॉडी में बहुत ताकत कमजोर होता है, इसके लिए मेरे पास अच्छा इलाज है।
0: बिल्कुल सही, यहां नंबर है, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो बैक पेन है, या कंधों में खिंचाव रहता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, एक बार कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी को, 4374383399। 9399 नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 4374383399। गुरुजी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू।
2: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
3: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
2: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
3: 90% पास रेट।
2: कॉल नाउ 416-743-9222
3: 416-743-9222
2: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
4: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा तां जवाब ही नहीं। सोहणे फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है। फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।

0: ये भी अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में कवर होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा एग्जाम अपने बच्चों का करवाना चाहते हैं तो जरूर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें 905-460-8888। अब बात करेंगे शाली जी डील्स की।
1: जी,
0: कैनेडा डे गया है, बहुत सारे बिजनेस है, छुट्टियां होगी, घूमने के लिए जाना है, उनको बढ़िया बढ़िया शेड्स चाहिए या उनको बढ़िया ब्रांडेड फ्रेम्स चाहिए। तो ब्रांडेड फ्रेम्स अगर आपके पास अच्छे लेने हैं तो 2026 की समर कलेक्शन के सारे ही नए मॉडल हमारे पास पहुंच चुके हैं। आप गुच्ची के, प्राडा के, टिफनी के, टॉम फोर्ड के, या फिर वर्साची के, या बर्बरी के, कोई भी ब्रांडेड सनग्लासेस लेना चाहते हैं या ब्रांडेड फ्रेम, तो इन सब के ऊपर आपको दोस्तों फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है जी।
1: और
0: शालिनी जी, अगर किसी को रेबन के फ्रेम चाहिए, अरमानी के फ्रेम चाहिए, कोच के, टॉरी बर्च के, या फिर केज स्वेट के, तो ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी डील होती जी कि लेटेस्ट मॉडल हो और 50% ऑफ के ऊपर चल रहे हो। और साथ के साथ हमने एक क्लियर आउट सेक्शन रखा जी, इसमें आपको टॉमी हिल फिगर के फ्रेम, कैल्विन क्लाइन के फ्रेम, फैंडी के फ्रेम एंड वैलेंटिनो के फ्रेम फ्लैट 75% ऑफ करके दिए जा रहे हैं। सो ये ह्यूज सेल जो है ये चली है जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर। और साथ के साथ हमने एक वैल्यू पैकेज भी रखा है शाली जी, क्योंकि कई लिस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको होता है कि हमारे पास बेनिफिट्स नहीं है, तो हमारा कम से कम अमाउंट में बढ़िया चश्मा बन जाए, तो उनके लिए $300 की कीमत का सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम एंड $100 की कीमत के सिंगल विजन लेंसेज ये वैल्यू पैकेज में इंक्लूडेड है। सो ये 400 का पैकेज सिर्फ $129 में दिया जा रहा है। कई बार हमारे लिसनर्स होते हैं वो वेट करते हैं कि ईयर एंड में लेंगे, तब अगर ईयर एंड में ये प्राइजेस नहीं रही फिर वो कहते हैं जी हमें वो वाली डील दे दो, तब वो डील नहीं मिलती। सो अगर अभी 129 में आपको पैकेज मिल रहा है दोस्तों, तो इसको मिस मत करें। और साथ के साथ अगर आपको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए तो एसीलॉर्ड कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, $300 की कीमत के लेंसेज एंड $300 की कीमत का फ्रेम, 600 का पैकेज हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $258 में दे रहे हैं शालिनी जी। और ऑन टॉप ऑफ इट आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, एंटी ग्लेयर, स्क्रैच, ब्लू लाइट, यूवी, जितनी भी कोटिंग ऐड करवाएंगे सभी की सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ दी जा रही है।
1: वाओ, और क्या बात है।
0: अगर कोई चाहता है कि दो पेयर हो उनके पास, एक घर पे रखना है एक ऑफिस में, पहले पेयर के ऊपर कोटिंग्स 50% ऑफ है और दूसरे पेयर के ऊपर कोटिंग्स बिल्कुल फ्री। सो अगर हमारे लेना चाहते हैं तो जरूर पहुंचे जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड सील्स कह लें या कैनेडियन सील्स के इंटरसेक्शन, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स है बताते चले कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं। सो दोस्तों एक ही नंबर, कोई भी जानकारी या अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो 905-460-8888, 905-460-8888।
1: 905-460-8888 पर दोस्तों राइट अवे कॉल करें। बहुत ही बढ़िया समर बोनांजा ऑफर यानी ऑफर्स लगे हुए हैं स्पेक्स एक्सप्रेस पे। राजन जी, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट,
0: थैंक यू सो मच,
1: टेक केयर।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga, the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Delhi to Dublin from Vancouver, Shalom Xavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School Canada, Jadu Entertainment, Rising Star finalists and the 2026 star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, free children arts and balloon making workshops, children's Mardi Gras parade with marching band, completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
4: नोट कीजिए दियोल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स। आप जा सकते हैं टोरंटो से बेंगलुरु अगस्त टू सितंबर।

0: ट्रेंड इन अक्टूबर राउंड ट्रिप 1365 में, टोरंटो से दिल्ली जुलाई में वन वे 1049 में दो बैग्स के साथ, टोरंटो से बेंगलुरु 845 में दो बैग्स के साथ इन सितंबर वन वे, टोरंटो से दिल्ली अक्टूबर में वन वे 970 में दो बैग्स के साथ, टोरंटो से पेरिस डायरेक्ट फ्लाइट्स अगस्त टू सितंबर रिटर्न फेयर $920, टू लोकेशंस टू सर्व यू इटोबिको एंड ब्रैम्पटन, दे विल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200.
1: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ। ਫॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com or call 416-922-5263. Kanda Optical, the name you can trust.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232। कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कनाडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। टॉप क्वालिटी मटेरियल्स, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग। चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, हर सॉल्यूशन मिलता है बड़े प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ। 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। कॉल कीजिए 416-831-4790,
3: 416-831-4790. Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: Hashtag Homes and Rahul Kashyap आपके लिए लेकर आए हैं Brampton and Caledon border पर at Mayfield and Gore, freehold towns from mid-700s, semis from mid-800s and detached homes from mid-900s. Master plan community of 2500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
3: वेलकम बैक दोस्तों, आपका शालिनी फिर से स्वागत करती है. और अब हेल्थ की बात, यानी हेल्थ होती है तो वेल्थ होती है, हेल्थ होती है तो हम तो खुश रहते हैं, साथ ही जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं वो और ज्यादा खुश रहते हैं. टू सी अस हैप्पी, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लाइफ में खुश रहें. और अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा परेशान कर रहा है तो उसको वहीं के वहीं ठीक करने की ज़रूरत है, और वो भी शॉर्ट टर्म इलाज नहीं, लॉन्ग टर्म इलाज. तो जब हमें लॉन्ग टर्म इलाज चाहिए तो हमें एक ऐसा नाम चाहिए जो लॉन्ग टर्म से ये काम कर रहा है, यानी 9 generations से ये काम कर रहे हैं आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी. आपकी ला इलाज बीमारियों का इलाज उनके पास है, एक नहीं दो दो लोकेशन से, यानी स्कारब्रो से भी आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन से भी सर्व करते हैं, और गुरुजी से करेंगे एक छोटी सी मुलाकात. नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप?
4: नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते. कैसा है जी आपको? मैं बहुत अच्छा है, भगवान आशीर्वाद से.
3: बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. तो गुरुजी, हमारे लिसनर्स को बताएं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं.
4: हाँ जी, पहले मेरे बारे में बताना सबसे है. हाँ जी, मैं 9 generations से वेद है जी.
3: क्या बात है.
4: मैं, मेरा मेरा पापा, मेरा दादा, मेरा परदादा, वैसा मैं 9 generations से ये काम में आ रहा है, पिछले 9 generations से. ऐसा है, ऐसा है, हम लोगों को भी पता चलता है, आपको भी मालूम है. आपको वो इंडिया में 70-90 साल के पहले MBBS डॉक्टर बहुत कम था.
3: सही बात.
4: उस टाइम लोगों को बीमार हुए तो, बीमार हुए तो लोग जा रहा है हमारा वो वैद्य को पास जा रहा है, वैद्य का पास. ये वेद, या ये वेद क्या करता है, उस टाइम केमिकल वेमिकल नहीं था. उस टाइम वो लैब टेक्निशियन स्कैनिंग वो भी नहीं था. उस टाइम वो हमारा पल्स देखता है, पल्स मतलब नर्व्स देखता है. नर्व्स देख के उसमें वाता दो पित्त कबा रहता है, ये तीन में क्या प्रॉब्लम हमारा शरीर को अंदर रहता है ये पता करके उसको क्या जड़ी बूटियां देना है वैसा देता है. तब मैं वैसा फैमिली से मैं आया था, मेरे यंगस्टर से सारा वैसा काम करके अभी वैसा काम मैं अभी इधर भी कर रहा है.
3: वेरी
4: नाइस. इससे हमको वो सारा इलाज जड़ी बूटिया से आता है. ये जड़ी बूटिया नॉर्मल नहीं जी, ये जड़ी बूटिया लेकर आता है श्रीलंका से, केरला से, हिमालय से, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैसा हिमालय पर्वतों के ऊपर जाके उधर से ये जड़ी बूटियां लेकर आके हम थोड़ा उसको ठीक ठाक करके उससे हम बना के हम लोगों को इलाज देता है. ये इलाज ज्यादा ज्यादा शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है सारा को वो जाता है.
3: अच्छा, वेरी नाइस.
4: या उसमें आपको भी बहुत लोग हमारा शो सुन के हमारा पास आके ठीक आके आपको भी बात किया था. उसमें जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस पेन के लिए, एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमांटिक आर्थराइटिस के लिए, एंड नर्व पिंच होता है, सायटिका आता है, सायटिका के लिए, सायटिका और बैक पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए, शोल्डर में हमारा हाथ में नमनेस हो जाता है उसके लिए, शोल्डर के लिए, बोन के दर्द के लिए, एंड पेट में जी बहुत लोगों को जी गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, थोड़ा खाता है पेट फुल होता है, अच्छा से डाइजेशन नहीं होता है, लीवर में फैटी हो जाता है, इस कारण से वैसा होता है.
3: That's right.
4: उसके लिए भी और स्किन डिसीज के लिए एंड स्किन डिसीज के लिए, शुगर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए और बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम, साइनस के लिए होता है, आस्थमा के लिए, नोस ब्लॉक हो जाता है, इसके लिए कफ, मेरे पास बहुत लोग आ गया था, बहुत कफ कफ कफ करता है, 3 महीना 4 महीना से कफ करता रहता है, वैसा लोगों को बहुत लोगों के ठीक हो गया था।
3: ओके,
4: यस, वैसा काशी के लिए और चोट में इंफेक्शन इचिंग हो जाता है उसके लिए और आस्थमा के लिए और शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है। अभी आजकल बहुत लोग मेरे को फोन कर रहा है, 65 प्लस एज लोगों को, शुगर लोगों को, नॉर्मल लोगों को यूरिन इन्फेक्शन आता है, यूरिन बार बार जाता है, यूरिन नहीं रुकता है, बार बार जाने के पहले लीकेज होता है, वैसा के लिए बहुत लोगों को मेक किया था। और शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है हमारा पास भगवान आशीर्वाद से इलाज है जी, हम रिलीजन नहीं देखता है, सारा लोगों को वेलकम करते, बहुत लोग आके ठीक हो रहा है।
3: क्या बात है, दैट्स अमेजिंग गुरु जी। तो मैं यहाँ पर आपका हॉटलाइन नंबर बता दूं दोस्तों, ब्रैम्पटन एंड स्कार्बरो दो लोकेशन से सर्व करते हैं गुरुजी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे स्काब्रो में रहते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं। आप ये हॉटलाइन नंबर लिख लें जो आप मुझसे कभी भी कहीं भी ले सकते हैं, 437-438-3399 437-438-3399। इस नंबर को अपने पास सेव कर लें और राइट अवे कॉल करें फॉर एनी बीमारी का सोल्यूशन। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपसे फिर जुड़ेंगे बहुत जल्द।
4: थैंक यू, नमस्ते,
3: नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
5: 3D Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga, the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi Queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Danny to Dublin from Vancouver, Shalom Xavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School Canada, Jadu Entertainment, Rising Star Finalists, and the 2026 Star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, free children arts and balloon making workshops, children's Mardi Gras parade with marching band. Completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com.
6: वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3। और दोस्तों अब चलते हैं मिड्ढा फर्नीचर गैलरी की तरफ, जहां से पवन मिड्ढा जी जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ इस वीकेंड के स्पेशल ऑफर्स लेकर। पवन जी, वेलकम टू द शो।
7: रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिड्डा फर्नीचर हाजिर है आपकी सेवा में, 5 लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन से। और कैनेडा डे कल गया तो बिल्कुल, शालिनी जी कैनेडा डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कहते हैं ना, हम जितने भी बहन भाई हैं, बहुत सारे बहन भाई हम एज ए इमिग्रेंट आए हैं, तो हमारा जन्म चाहे इंडिया में, पाकिस्तान में या किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हुआ, तो जब यहाँ पे आए तो कनाडा ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। तो सलूट है इस धरती को, सलूट है कनाडा के फ्लैग को, तो हम प्राउड टू बी कैनेडियन, हमें बहुत गर्व होना चाहिए। हाँ, कहते हैं ना वो अपने गुरदास मान जी ने गाया ना, जिस देश दा खाईदा उनका बुरा नहीं बंगीदा, तो जहाँ जन्म लिया उसको भी सलूट करते हैं। मुझे इंडियन होने पे बहुत गर्व है और मुझे उतना ही गर्व है जितना मुझे इंडियन होने पे गर्व है, उतना ही मुझे कैनेडियन होने पे भी गर्व है। तो जब इस खुशी को मनाते हुए तो फिर अपने प्रॉफिट को कम करके देते हैं। हमारा फ्लायर जो अभी तक ग्रैंड ओपनिंग वाला, कैनेडा डे वाला हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, और वो पहले नंबर तो जैसे 2779 एशले का मॉडल नंबर क्वीन बेड हम 1199 का दे रहे हैं, जो बाजार से 30% कम है, लेकिन थर्सडे से लेके संडे तक इन चार दिनों में कैनेडा डे को मनाते हो अगर आएंगे 10% और डिस्काउंट, 10% और डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। जो बहन भाई वाला डिस्काउंट है वो इन स्टोर एक्स्ट्रा से करके देते हैं, कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन हम उसको नॉट पॉसिबल को पॉसिबल भी बना के देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका प्यार मिलता रहे, आपका साथ मिलता रहे, आपका, जी हाँ, आपका वैल्यूएबल बिजनेस भी हमें चाहिए, लेकिन एज ए कस्टमर हम चाहते हैं कि आप, पहले रिश्ता और मजबूत होगा जब आप कंपेयर करके, आप ही मंदन शॉप अराउंड करके आए, या कभी आपको कभी भी कंपेयर करने का मौका मिलता है तो आप जरूर करें, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आप हमारी प्राइसेस को लेस पाएंगे, क्योंकि हम ये जो प्यार जो लेस है वो भी आपका प्यार उसकी वजह है, क्योंकि आप प्यार और वॉल्यूम देते हो तो हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, आपकी वजह से मिलता है, आपको वापस कर देते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार कह दूं, कैनेडा डे अभी कल चला गया, लेकिन उसकी जो खुशी है हम पूरे संडे तक मनाएंगे, और हमारी जो एडवर्टीज प्राइस है, हमारी प्राइस, ये ना कहें कि 10% ही सस्ते हैं, पहले हम 30-40% सस्ते हैं, एक्स्ट्रा से 10% और डिस्काउंट आपको करके दे रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना, एक बार आए तो सही, या जब आए तो सही, अपना बनाएं तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी।
6: थैंक यू सो मच पवन जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इतनी अच्छी डील्स आपने हमारे साथ शेयर करी। तो दोस्तों, विजिट करें middafurniture.com, 5 लोकेशंस टू सर्व यू। कॉल 416-901-2810, दैट्स 416-901-2810। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
8: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
6: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 9054585300, 9054585300।
2: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश।
6: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ। और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स। 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। और अब नजर डालते हैं आज के दिन के ऊपर कि आज के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन को स्पेशल बनाती है। सबसे पहले आज है वर्ल्ड यूएफओ डे। एलियंस हैं या नहीं, ये डिबेट आज भी जारी है। स्काई को देखिए, क्या पता कोई सरप्राइज मिल जाए आपको। आज है आई फॉरगॉट डे। अगर आप आज कुछ भूल गए हैं तो ऑफिशियली एक्सक्यूज मिल गया, सॉरी आई फॉरगॉट, आज अलाउड है। मूड को ग्रूव करने के लिए नेशनल डिस्को डे है। डिस्को लाइट्स, रेट्रो बीट्स और फुल ऑन डांस वाइब्स। टर्न अप द म्यूजिक एंड डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है एक और बात के लिए आज, स्पेशल रिक्रिएशन फॉर द डिसेबल्ड डे। इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। Everyone deserves joy and recreation. और आज है थर्स्टी थर्सडे। हाइड्रेटेड रहिएगा क्योंकि आज गर्म थोड़ा ज्यादा है। अपनी फेवरेट ड्रिंक आप जल्द से जल्द इंजॉय कीजिए। मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून।

सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मेरे भाइयों, ये वॉइस बज गए हैं चार। हमारा आप सबको बहुत बहुत प्यार। वैसे तो कहते हैं ना कि प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखों तो क्या दो जहां में समाए ना इतना। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए ना इतना, पर जब मांगती हो तुम शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे, पर जब मांगती हो तुम शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे, तो समझ में नहीं आता अपनी तकदीर को हम पीटे कितना। ये वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African Lion
2: Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
3: Say what?
4: पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
5: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
4: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 647-299-4757, 647-299-4757, teamsabarwal.com.

0: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 9057999400।

0: Haan, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है तो लीजिए इस हफ्ते का सवाल। अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत कौन से साल में हुई? 1969, 1985 या 1950? 1969, 1985 या 1950? सही जवाब आपको ईमेल करना है contest@weeklyvoice.com, contest@weeklyvoice.com। एक लकी विनर को मिलेंगे अफ्रीकन लायन सफारीज के पासेस। आप जवाब ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट lionsafari.com। थर्सडे तक हमें आपके सवाल के जवाब मिल जाने चाहिए। तो बंदर भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ईमेल कीजिए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना मत भूलिएगा ताकि इनाम आप तक पहुंच सके। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त यतीन। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स का। बंदर भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021, 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
5: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.
8: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
9: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
11: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम।
12: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232।
3: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, जी डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। लिए चलते हैं आपको एक खूबसूरत नगमे की ओर, जिसे स्पॉन्सर किया है यश विंडोज एंड डोर्स ने। महेंद्र भाइयों, उनकी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, yashwindowsanddoors.com। कॉल भी कीजिएगा, धर्मेंद्र जी से आपकी बात होगी, फ्री एस्टिमेट दिया जाएगा। 416-732-3600 यश विंडोज एंड डोर्स। खूबसूरत विंडोज एंड डोर्स, क्वालिटी बेहतरीन और सुरक्षा भी बेहतरीन करे आपके घर की। 416-732-3600 आइए चलते हैं ये खूबसूरत नगमे की ओर।

0: शेरों, हाथियों और चीतों को बिल्कुल करीब से देखना चाहते हैं तो पहुंचिए अफ्रीकन लायन सफारी बिंदर भाइयों कनाडा के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ एडवेंचर पर। पहुंचना होगा 1386 कूपर रोड कैम्ब्रिज। आज ही टिकट बुक करें lionsafari.com पर। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
2: सस्ता

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड यूनिट नंबर 44-50 मिसिसागा मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3 डिनर 5-10 थर्सडे से संडे लंच 12-3 डिनर 5-10 वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे कॉल करें 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com गुरुलक्ष्मी स्वाद सेवा और साउथ इंडियन का असली तड़का

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Radio Voice, aapki pehli choice. 416-660-8545.
2: Imagine over 1,000 exotic birds and animals roaming wild. Come face to face with lions and nature's most amazing creatures, all closer than you'd ever imagined. African Lion Safari, Canada's original safari adventure. African
3: Lion Safari. Get closer and begin your adventure today at lionsafari.com.
4: Say whoa!
5: पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड पीके सबरवाल. एंजॉय एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड लंच. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
6: बहुत सारे इंसेंटिव्स जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
5: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट. 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com.
7: Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल.
8: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232.
9: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस। कॉल करें 416-660-8545।
7: हाँ जी मित्र भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है तो लीजिए इस हफ्ते का सवाल। अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत कौन से साल में हुई? 1969, 1985 या 1950? 1969, 1985 या 1950? सही जवाब आपको ईमेल करना है contest@weeklyvoice.com, contest@weeklyvoice.com। एक लकी विनर को मिलेंगे अफ्रीकन लायन सफारीज के पासेस। आप जवाब ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट lionsafari.com। थर्सडे तक हमें आपके सवाल के जवाब मिल जाने चाहिए। तो बंदर भाइयों, अफ्रीकन लायन सफारी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ईमेल कीजिए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना मत भूलिएगा ताकि इनाम आप तक पहुंच सके। ये हिडो वॉइस, हम है आपके दोस्त यतीन। डोसा खाने का मन है तो चलिए गुरु लक्ष्मी, 7070 सेंट बारबरा बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 44-50, मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को लंच 12-3, डिनर 5-10। थर्सडे से संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेनसडे को बंद लेकिन लॉन्ग वीकेंड्स पर खुले रहेंगे। कॉल करें 905-795-2299, 905-795-2299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरुलक्ष्मी, स्वाद सेवा और साउथ इंडिया का असली तड़का।
8: रेट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
9: सस्ता

0: Meet Rohit Dayasman at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: हाँ जी मित्र भाइयों, ये रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। दिस फ्राइडे रेडियो वॉइस होगा लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट, कनाडा डे प्रमोशंस। बहनों भाइयों, कनाडा डे की जबरदस्त सेल लगी है, वहां पर जरूर पहुंचिएगा। 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 6474487402 448 7402। दिस फ्राइडे रेडियो वॉइस होगा लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट।
5: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस FM 101.3 और मैं हूं अमिताभ। 4:30 बज चुके हैं और हर थर्सडे की तरह अब वक्त है हमारे खास इंटरैक्टिव सेगमेंट मॉर्गेज मंत्रा का, जहां हम मॉर्गेजेस, इंटरेस्ट रेट्स और रियल एस्टेट की दुनिया को आपके लिए सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल बनाते हैं। और इस सफर में हमारे साथ होते हैं कनाडा के सबसे भरोसेमंद मॉर्गेज प्रोफेशनल में से एक, नेशनल टॉप 5% अवार्ड विनिंग मॉर्गेज ब्रोकर श्री अयाज भांजी जी। अपने कई दशकों के तजुर्बे के साथ अयाज जी ने हजारों फैमिलीज को सही मॉर्गेज डिसीजंस लेने में मदद की है। अयाज जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे 4:50 तक। तो अगर आपका भी मॉर्गेज रिन्यूअल या फिर रीफाइनेंसिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बस फोन उठाइए और हमें स्टूडियो पे कॉल कीजिए ऑन 416-593

0: मेरा दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है नहीं। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप इस फादर को क्या एडवाइस देंगे, फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों एंगल से?
1: दिमाग सही बोल रहा है,
0: ओके
1: दिमाग सही बोल रहा है। लुक, देर इज नथिंग रॉन्ग इन हेल्पिंग अमिताभ भाई। इट्स ओके इफ योर सन नीड्स $50,000 टूवर्ड्स अ डाउन पेमेंट, इट
0: जी
1: इज ओके। दे यू नो, इट इज ओके टू गिव, इट्स ओके टू हेल्प। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट डज द सन एंड हिज वाइफ डू फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन। एंड इफ दे आर वर्किंग, हैव दे सेव्ड एनी ऑफ देयर ओन मनी टुवर्ड्स द डाउन पेमेंट? ओके, सो लेट्स से इफ समबडी इज बाइंग अ होम फॉर $600,000 एंड दे हैव 20 एंड द मिनिमम डाउन पेमेंट इज व्हाट 10 एंड 25 $35,000। इफ दे हैव $20,000 एंड दे वांट $15,000 टू गेट इनटू दैट होम, ओके, दैट्स समथिंग यू नो पेरेंट्स कैन कंसीडर एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग for the parents to basically get into a situation where they help. But there are multiple questions. If there are larger amounts involved, then first of all, see how are the kids going to afford it. If they want to buy a home for $1 million, if they don't have sufficient down payment, well, maybe they should not be getting into a $1 million home, right? So, and what is their employment structure looking like? Is this money going to be returned back in the future? And then, of course, on the parents' side, the assumption should always be, I think, that this money is not going to come back. And if it does not come back, then are the parents in a position to be able to absorb that expenditure? Because they're 61. Now, 61, you know, somebody can argue is still young. It's almost my age, but it's still young. And so there is room to recover still, not too many years, but in the 5-6 years. But is the person still working? Are the parents still working? Are their ability to earn money there? You know, so it's a really convoluted situation in the sense that you've got to be careful how you do it. But my circumstances or my thought process is that first of all, if kids need some help, then first of all they should be able to show what they are able to provide on their own. How much down payment they can give?
0: Yes. That makes sense. Yes. आज जी एक और प्रश्न आया हमारे पास कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा $50,000 है तो क्या मॉर्गेज पे डाउन करना बेहतर है या उस पैसे को इन्वेस्ट करना बेहतर होगा? आप क्या सोचते हैं? आपकी एडवाइस क्या होगी?
1: सिंपल आंसर है इसका। It is always good to pay down the mortgage. Investment ko chhod do. It is always good to pay down the debt. However, there is one big exception on it. Aur ye exception bahut simple hai. Main sab mere clients ko ye bolta hu. If you can invest this money in any tax sheltered investments, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? टैक्स शेल्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये होता है, यू हैव रूम इन योर आरआरएसपीस फॉर एग्जांपल, यू हैव रूम इन योर टीएफएसएस, ओके, वेयर यू गेट अ टैक्स ब्रेक। RRSP provides very good tax breaks. As a matter of fact, RRSP will provide you more return, you know, just by putting money in and getting the money back, between getting the money back, tax rebates, and the interest-free tax-free growth inside your RRSP, the combination of those two things far outweighs any return you're going to get on your money if you invest somewhere else. So if you have room in your tax-sheltered investments, please put money there. Forget about any investing. If you have room in your RRSPs, dump money in there. TFSAs, put money in there. And if those are maximized, then I would say just take your money, and you know that generally would tell you that you're in a good financial situation. Take that money and pay down the mortgage. Forget about investing. I think that's probably the best thing. But if you have, the only exception to that rule is if you have room to put money in a tax sheltered investment, then do that. Otherwise, I would say just go and pay down the mortgage.
0: बहुत बढ़िया अयाज जी। अयाज जी, अनफॉर्चुनेटली वी हैव रीच्ड दिस दैट पार्ट ऑफ द वीक वेयर वी हैव टू यू नो हेसिटेंटली से गुड बाय टू यू, बट विद द प्रॉमिस दैट यू विल बी बैक विद अस नेक्स्ट वीक एट 4:30 PM शार्प नेक्स्ट थर्सडे। एंड आवर लिसनर्स जो प्रश्न पूछना भूल गए या आज नहीं पूछ पाए किसी कारणवश, तो प्लीज अगले थर्सडे आप अयाज जी से डायरेक्टली मुखातिब होकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर वही रहेगा 416-593-0055। अयाज जी, some closing remarks, please.
1: Thank you. I think, you know, I want to continue to say to you, Amitabh, that I get tremendous number of calls from our listeners. a lot of them looking for advice, a lot of them just, you know, acknowledging, you know, what we are talking about, because it says that it helps them a lot to understand the market dynamics. A lot of them just calling to say thank you. We've given some advice that they've gone to their own banks and negotiated stuff. And some that need help that have come in and worked with us. Today, I had a call from a gentleman who's dealing with RBC, and he had some advice. He really wants to get some work done, wanted to first check with RBC. I guided him. So you see what happens is there is a tremendous positive benefit, I think, of our discussions. And so I want to thank you, sir, for allowing me to come on here. I also want to thank all our listeners, you know, for their kind words and their acknowledgement. They always call some. I just get text messages to thank me for being on the radio today and sharing such important information. So, you know, it's my pleasure. Absolutely. I want to say the following before I hang up, that I think personally, I think I continue to remain optimistic on the Canadian economy. I think I know people are depressed a little bit. A lot of people like myself also have invested in pre-construction condominiums. I think, you know, always remember, if you're buying something for investment, please make sure you have the ability to hold on to these things. If you're on the edge, it becomes very difficult. And I know a lot of people are on the edge, but I remain optimistic. I really believe in the efforts that the federal government is making to diversify our economy. And I think, you know, we will see in a few months the results of that. I think the economy continues to be resilient. And I think we're headed in the right direction.
0: On that positive note, Ayazji, thank you very much for your incredible insights. And thank you for your valuable time. Aapse mulaqat hogi agle Thursday, theek 4:30 baje.
1: Thank you. Thank you.
0: Chaliye chalte hain ek chote se break here.
2: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545.
3: हाँ जी भाइयों, ये वॉइस और हम में आपके दोस्त जतीन रॉजर्स की बेहतरीन डील्स आपने ली, वकार जी से कांटेक्ट कीजिएगा. वकार जी है रॉजर्स एम्प्लॉई और आपके सिस्टम में भी एक्सेस है, इसलिए आपको देते हैं सुपर डुपर हिट डील्स. जरूर डायल कीजिएगा 647-864-8000. सीधे चलते हैं वकार जी के पास. वकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्लीज रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी जरूर दीजिएगा. ओवर टू वकार खान जी.
4: थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको और तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार. बहुत सारी प्रमोशंस हैं, बंडल ऑफर्स हैं, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ हैं. इसमें पैकेज है, टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9:30 मिनट हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें. बहुत ही स्पेशल ऑफर है. अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सपीरियंस इंटरनेट, लेटेस्ट मॉडर्न अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत ही चीप रेट पे मिल जाएंगे. रॉजर्स के सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है. और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है. प्लीज कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है. जरूर एक बार कॉल कीजिए, आपको बहुत ही चीप रेट पे इंटरनेट दिला देंगे. नंबर है मेरा 647-864-8000. मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है. आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा. नंबर अगेन 647-864-8000.
3: वंडरफुल. वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बिंदर भाइयों, जरूर कॉल करके बात कीजिएगा वकार जी से. 647-864-8000. ये ही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन.

विल वी मीट अगेन ऑन द डे जहाँ इस हाई गर्मी ऑफ गर्मी पर और शाम आते आते पॉसिबिलिटी ये है कि आ जाए वो दन दनाता सा तूफान विद बारिश की बौछार्स। अब सूरज दादा इतना चमकेंगे धमकेंगे तो बादल तो रेस्क्यू के लिए देर से या सवेर से आ ही जाएंगे ना। प्रकृति रे, क्लोज टू 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है फील लाइक, विद कहीं कहीं ऑरेंज हीट वार्निंग स्टिल इन इफेक्ट है। सन 2002 का अगर आज का तापमान देखें, सन 2002 का तो वो तोड़ दिया है आज के तापमान ने रिकॉर्ड बेसिकली, कोई अराउंड 0.4 डिग्री सेल्सियस से। मुझे लग रहा है इसी बोल सकता होता बेचारा तो वही भी बोल रहा होता कि चल चल के लगातार थक गया हूँ यार, थोड़ी देर के लिए मुझे भी आराम दे दो यार, है ना। शाम को अराउंड 7 PM अगर आप बाहर निकलें, खासकर इफ़ यू हैव दोज फीफा आउटडोर प्लान्स इन टोरंटो, देन अपने रेनकोट और छाते लेकर ही निकले। चांसेस हैं कि बहुत तेज़ हवाएं बहेंगी, बरसात होगी भारी और इवन पिंग पोंग साइजेस के ओले पड़ सकते हैं, चांसेस हैं। वैसे बारिश में सभी जब एक साथ भीग रहे होते हैं ना इतनी गर्मी के बाद, और मैं जैसी हाई एनर्जी एक्टिविटी भी चल रही होती है अराउंड, उस तरह की एनर्जी होती है, तो मुझे लगता है भीगने का एक अलग ही मजा होता है। नहीं, सो ऑन दिस करके देख लें ये आज यार, जो अब तक नहीं किया आपने वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर, सेइंग कि बारिश हो या धूप या हो तूफान, खेल के दीवानों को या उन हाई एनर्जी एंथुजियास्ट को रोक सका है भला कौन? बोलो तो।

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum,
5: the only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: Get on your feet with Peppy Nukkar Beats.

rumors, reviews and ratings of latest releases. Alright, hate you, miss me. I'm going to review the trailer of Alpha. कल रिलीज हो रही है वैसे फिल्म, कल भी इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, रिव्यूज आ जाएंगे कल तक. यशराज बैनर्स की फीमेल स्पाई थ्रिलर यूनिवर्स वाली फिल्म है ये, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी एकदम से एक्शन रोल भी देखेंगे आपको, हाई ऑक्टेन एक्शन करती हुई. पॉपी देओल भी है इसमें, विलेन बने हैं. अनिल कपूर है, यूजुअल सीरियस रिस्पॉन्सिबल वाला रोल है. और ऋतिक रोशन की आंखें भी है ट्रेलर में, लग रहा है कैमियो है उनका. तो मेल टू फीमेल स्पाई यूनिवर्स की जो ये जर्नी है यशराज बैनर्स की, फ्रॉम सलमान शाहरुख ऋतिक टू आलियन शर्वरी, आई गेस यही अपने आप में एक अच्छा चेंज है. पर कितना इफेक्टिव रहेगा वो देखना बाकी है, अल्फा होगा या नहीं. ट्रेलर से मैं ये कह सकती हूँ क्यूरियोसिटी डेफिनेटली जनरेट हो रही है. स्टार पावर इज गुड टू. बाकी जो एक गाना है इसका बैम बैम, बैकग्राउंड स्कोर की तरह ज़्यादा लग रहा है और वो फिर बहुत अच्छा भी लग रहा है. ऑडियंस से क्लिक कर सकता है वो, especially when you are watching it in theater. कहानी में कितने झोल हैं बाकी या क्रिस्प है वो देखकर ही पता चलेगा. ट्रेलर सजेस्ट करता है धोखा, बदला और हैवी स्पाई ट्रेनिंग वाली फिल्म, इसलिए इंटरेस्टिंग है. देयर इज अ रामायण रेफरेंस टू, जैसे कि आलिया का नाम ही सीता है जो जलाएगी लंका, ऐसा ट्रेलर में वो बोल रही है. हॉलीवुड स्टाइल एक्शन कोरियोग्राफी मुझे देखने को मिली है ट्रेलर में. वॉर का रेफरेंस भी है, जैसे कि कबीर फ्रॉम वॉर, ऋतिक मैंने बताया कि कैमियो में दिख रहे हैं. बाकी ट्रेलर में ही समथिंग इज मिसिंग मुझे ऐसा लगा. मे बी कुछ कास्टिंग और बेटर हो सकती थी या कुछ डायलॉग्स ऐसे जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं करे, आई डोंट नो व्हाट. पर जो बात अदर स्पाई मूवीज में इनकी रही है यशराज बैनर्स की, जैसे कि टाइगर सीरीज रही है, वो बात नहीं लग रही थी, कुछ मिसिंग लग रहा था. मे बी इट्स जस्ट यू नो द ट्रेलर विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन अ बेटर वे, अच्छा बना सकते थे और शायद. वेल रिव्यूज अभी जल्दी ही पता चल जाएंगे, कल ही रिलीज हो रही है क्योंकि, तो कल वीकेंड वॉच में इसके बारे में हम बात जरूर करेंगे. तो फिलहाल ट्रेलर देख के मैं ये कह सकती हूँ इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सुपर हिट फॉर मी, ट्रेलर ऐसा कहता है. बट या समवेयर अबव अ मिस, इतनी तो होगी. बाकी देखते हैं कल के रिव्यूज क्या कहते हैं.

0: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
1: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
2: That's the number Aisha Munawwar ji ko call karne ke liye 416-428-2165. Is number pe call karenge to aapki karze se related jo bhi samasyaye hain fatafat fur ho jayengi. Well, call karein, par jab tak aap karte hain call, ek quick si mulaqat main kara deti hoon yahi par with Aisha Munawwar. Aisha ji, welcome and over to you.
3: Thank you very much for having me on air. I'm Aisha Munawwar. I'm offering debt solutions since last 25 years to our community. और बेताशा हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अब डेट फ्री हो चुके हुए हैं और हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ और अपने बिजनेसेस जो हैं उसको रन कर रहे हैं. तो हम कंज्यूमर प्रपोजल्स की सर्विसेज ऑफर करते हैं, बैंक्रप्सीज की भी सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसके अलावा क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, लमसम प्रपोजल्स. अगर किसी के प्रपोजल्स टूट गए हैं तो उसके लिए भी आप एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं. सो वी कैन एडवाइज यू कि क्या आपकी ऑप्शंस हैं. आपके एसेट्स जो हैं हम कोशिश करते हैं प्रोटेक्टेड रहें, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स बन जाएँ और लीगल एक्शन और कलेक्शन जो हैं वो रुक जाएँ. All information is being kept confidential because हम आप ही की कम्युनिटी से हैं और मैं फुली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट्स नॉट ईजी टू डिस्कस विद एवरीबडी. और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप हर एक से ये इन्फॉर्मेशन लें और गलत किस्म की एडवाइस जो है वो ले लें और बाद में उसका नुकसान हो आपको. तो ऑलवेज यू नो कंसल्ट द प्रोफेशनल्स. सो वी आर प्रोफेशनल्स और उसमें यह है कि आपको राइट एडवाइस प्रोवाइड की जाती है दैट सूट्स यू द बेस्ट. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने आपके एक फ्रेंड को कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसी सर्विस को हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे या वो आपको सूट करती है. फर्स्ट वी हैव टू रिव्यू एंड सी आपके लिए क्या बेस्ट है, आपने किस तरह से इसमें से निकलना है, आपने फ्यूचर में किस तरह से दोबारा एस्टैब्लिश होना है और किस तरह से दोबारा क्रेडिट आपने जो है वो एस्टैब्लिश करना है, किस तरह एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फर्स्ट कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं. आई टोटली एक्नॉलेज एंड ऑनर दिस थिंग दैट ऑल आवर क्लाइंट्स जो हमें कॉल करते हैं किसी भी सोर्स से हमें कॉल कर रहे हों, चाहे वो दोस्तों ने रेफर की हों, चाहे एडवर्टीजमेंट रेडियो की हो, न्यूज़पेपर की हो, जहाँ से भी वो कॉल करते हैं, दे प्रेफर टू टॉक टू मी पर्सनली. एंड आई हैव टू लेट यू नो कि हमारे ऑफिस से कोई मेरा ऑफिस कलीग मेरे बिहाफ पे अपॉइंटमेंट मेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता. मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स की टेक केयर करती हूँ. तो अगर आप मुझे सेल नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें, अगर आप देखते हैं कि फ़ोन मेरा बिजी आ रहा है तो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड वी विल स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ताकि आराम से कंफर्टेबली टाइम दे के हम आपकी सिचुएशन को डिस्कस करें और सोल्यूशंस को वर्कआउट करें. एंड वन कॉल विल मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ, दैट आई गारंटी. सो माई फोन नंबर इज 416-428-2165. अगेन इट्स 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
2: थैंक यू आयशा जी, थैंक यू सो मच. वेल ये थी आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ. 416-428-2165 उनका नंबर है. एज आई सेड, अगर अपनी जिंदगी में कर्जे में आप डूबते चले जा रहे हैं या लग रहा है कि शायद आ जाएं, तो भाई फटाफट टाइमली एक्शन लें और उस समस्या से बाहर निकल जाएं. उनको कॉल कर लें, लंबा अनुभव है और अपनी जिंदगी के लिए खुशियों का रीसेट बटन आप दबा सकते हैं वंस यू कॉल हर. 416-428-2165.

0: हर घर कुछ कहता है।
1: घर की बात संजीव मनोचा के साथ,
0: ब्रॉट टू यू बाय माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी, एवरी थर्सडे 6 PM ओनली ऑन फिल्मी नुक्कड़। ऑलराइट, आई हैव अ क्वेश्चन संजीव जी, आपसे पूछना है मुझे एक सवाल, पर उससे पहले एक कॉलर और ले लेते हैं, काफी देर से कॉल पे हैं। हेलो जी। हेलो जी।
2: हेलो,
0: व्हाट्स योर नेम?
2: मोहम्मद।
0: मोहम्मद जी, आपका कोई सवाल है संजीव जी से?
2: नहीं, मुझे तो ये पहली मतलब सुन रहा हूँ, तो आप गाने बजाते हो तो उसमें कोई क्लासिकल गाने बजाते हैं, हिंदी पुराने गाने?
0: आपको सुनना चाहेंगे तो हम बिल्कुल बजाएंगे, आप हमें रिक्वेस्ट भेजें।
2: 50 से 70 के कोई?
0: 50-70s के मैं बहुत गाने बजाती हूँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट एरा मेरा फेवरेट एरा है सर, मोहम्मद सर, और मैं बहुत बजाती हूँ, बट आपकी कोई रिक्वेस्ट है आप प्लीज बताइए, आई वुड लव टू प्ले।
2: हाँ, एक गाना है महेंद्र कपूर और पता नहीं किसकी आवाज है, दिल लगा कर हम ये
0: समझे जिंदगी क्या चीज है, इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है। ब्यूटीफुल गजल, वो मैं बिल्कुल आपके लिए चलाऊंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, बट आई एम गोइंग टू प्ले। आप महेंद्र कपूर साहब वाला वर्जन सुनेंगे, आशा जी का वर्जन सुनेंगे?
2: महेंद्र कपूर वाला।
0: चले ठीक है, आपके लिए मेल वर्जन चलाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो।
3: यस,
0: आपका कोई सवाल है?
3: नो, आई वाज वेटिंग फॉर
0: ओके ओके कविता जी, राइट?
3: ओके
0: ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो संजीव जी से मैं अपना सवाल पूछ लेती हूँ फिलहाल। संजीव जी, मुझे एक बात बताएं कि जब ये घर की हिस्ट्री तो ठीक है हमने चेक कर ली, पर जब ये घर ले रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम ये देखते हैं कि पहले से स्टोव होता है, फ्रिज होता है, ये पहले से लगे हुए होते हैं, तो ये क्या हमेशा ही पैकेज में ये आते हैं या ये कुछ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन होते हैं, हाउ डज इट वर्क, या ये कभी ऐसा होता है कि ये नहीं है?
4: हाँ स्वाति जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं कि जो चीज़ सामने हमें दिख रही है वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो आनी ही आनी है, ठीक है, लेकिन जब भी हमने ऑफर प्रिपेयर करनी है, अग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल प्रिपेयर करना है, तो उसमें हमने ये कोशिश करनी है कि हम एक एक चीज उसको इंक्लूड करें, लेट्स नॉट अज्यूम कि जो हमने देखा वो आएगा।
0: अच्छा,
4: जब तक एग्रीमेंट में वो चीज लिखी नहीं है समझ लीजिए वो नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं ना, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि अगर यहाँ पे वन वे का साइन नहीं है तो समझ लो कि टू वे है। सो सिमिलरली अगर वो चीज वहां पे एग्रीमेंट में आपने मेंशन नहीं की और क्लोजिंग के बाद आपको लगा अरे यहाँ से तो फ्रिज गायब हो गया, अरे यहाँ पे तो स्टोव पड़ा था वो गायब हो गया,
0: ये तो
4: और
0: उठा के ले गए,
4: नहीं तो उठा के ले गए, और आपने देखा कि आपने अग्रीमेंट में तो लिखा नहीं था लेकिन लिस्टिंग में भले से लिखा हो, फोटो में भले से हो उसमें, बट एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट इंक्लूडिंग दैट, सो यू आई मीन देयर मे नॉट बी दोज थिंग्स, सो प्लीज मेक श्योर कि वो चीजें आप अग्रीमेंट ऑफ परचेज में लिखें। और सेकेंडली, हम एक क्लॉज मेंशन करते हैं उसमें जिसमें हम ये कहते हैं चैटल्स एंड फिक्स्चर्स इंक्लूडेड एंड दे विल बी इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर और इन वर्किंग ऑर्डर टिल द टाइम ऑफ क्लोजिंग।
0: अच्छा,
4: ठीक है, मतलब उसकी वर्डिंग मैं पूरी अभी नहीं बताऊंगा, आई एम जस्ट कीपिंग इट अ सिंपल। तो उसका मतलब ये होता है कि जिस दिन तक क्लोजिंग है उस दिन तक तो वो चलेगी ठीक, अगले दिन खराब हो गई तो कोई वारंटी नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज आस्क योर रियल्टर और यू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू सी दिस क्लॉज इन द अग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल कि वो वहां पे लिखा हो। तो एक तो एक एक चीज मेंशन करें उसमें, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट अज्यूम कि यहाँ पे सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, एंड सेकेंडली उसकी कंडीशन कैसी रहेगी, वर्किंग कंडीशन होगी नहीं होगी,

0: एजिस में होगा नहीं होगा, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर।
1: मुझे याद है जब हमने घर लिया था ये वाला जिसमें अब हम रहते हैं, तो बड़ा गार्डन है बाहर और वो बड़ा प्यारा एक प्लांट था। जब हम क्लोजिंग के बाद आए वो प्लांट ले गए थे तो मैंने बोला कि अरे ये तो प्लांट ले वो गायब है यहाँ से, मतलब ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि घर के अंदर का सामान लेकर रहे होते हैं, प्लांट थोड़े लगता है कि ये वाला प्लांट भी रहेगा। तो नाउ डोंट अज्यूम कि एवरीथिंग व्हाट यू सी,
0: नेवर अज्यूम। अगर आपको कोई चीज पसंद है, अगर आपको प्लांट भी पसंद था,
1: हाँ, तो उसको
0: यू कुड हैव रिटन कि ये प्लांट जो पीछे पड़ा है हम उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स बिकम पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन आल्सो।
1: यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
0: तो ये चीजें हैं।
1: चले जाने से पहले आप प्लीज हमें कुछ लिस्टिंग जरूर बताएं।
0: जी डेफिनेटली, बिल्कुल।
1: और मैं अगली बार कुछ ऐसी कहानी सुनना चाहूंगी जो बायर्स के पर्सपेक्टिव से ना हो, सेलर के पर्सपेक्टिव से भी हो।
0: 100% दोनों एस्पेक्ट।
1: जी
0: बिल्कुल ठीक बात आपकी। मेरे पास में एक बहुत बढ़िया मैं लिस्टिंग लेके आया हूँ। पिकरिंग में डिटैच्ड प्रॉपर्टी है, 3 बेडरूम 3 बाथरूम, फिनिश्ड बेसमेंट, 2 कार का गैराज है, इन ग्राउंड स्विमिंग पूल है, बहुत ही अच्छा लॉट है, 126 फीट की उसकी डेप्थ है और वंडरफुल लोकेशन है पिकरिंग में, और पिकरिंग आज की डेट में कोई दूर भी नहीं है।
1: राइट,
0: यहाँ तो बिल्कुल, मतलब कोई जमाना था जब हम सोचते थे कि पिकरिंग बहुत दूर है,
1: अब तो दुनिया गोल हो चुका है,
0: बहुत नजदीक है
1: जी।
0: बहुत ही जेन्युइन प्राइस के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगी है, मोटिवेटेड सेलर्स हैं। अगर आपको प्राइवेट शोइंग करनी है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल करें, मेरा नंबर है 4168437600। और दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा कि कई दफा हमारा होता है कि हम ना अपना एक कस्टमाइज घर बनाना चाहते हैं,
1: बहुत इच्छा
0: हमारी फैमिली बड़ी है, हम 4 लोग हैं 5 लोग हैं, हम बढ़िया घर बनाना चाहते हैं और लेकिन विद इन द सिटी हमें कोई अच्छी जगह मिलती नहीं है। तो आपकी उस समस्या को समाधान देते हुए मैं लेके आया हूँ एक डिटैच्ड प्रॉपर्टी है जिसमें 2-स्टोरी हाउस बना हुआ है, 6 एकड़ की जगह है, लगभग 6 एकड़ की, और यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से हार्डली 35 से 40 मिनट लगते हैं वहाँ पे जाने में। प्रॉपर्टी स्टॉपविल में है टू बी प्रिसाइज, और उससे भी बलगर पास में। 4 बेडरूम का घर ऑलरेडी बना हुआ है, 2 वॉशरूम है और वो लीज्ड भी था, तो यू कैन इवन लीज इट नाउ एंड देन बिल्ड इट लेटर। अगर अभी आपको करना है तो ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 6 एकड़ की जगह है, यू कैन बिल्ड अ वंडरफुल 10,000 square feet होम ऑल्सो। प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ही जेन्युइन है, विच कैन बी इजिली अफोर्डेबल। मुझे कॉल करें, मैं आपको ज्यादा जानकारी दूंगा, 4168437600, 416-843-7600 मेरा नंबर है।
1: थैंक यू सो मच संजीव जी, मैं नंबर फिर से बता दूं, 416-843-7600। ये लिस्टिंग जो आपने सुनी है या और कोई लिस्टिंग, आप एक बार कॉल जरूर करिएगा, और जितनी जानकारी हमें यहाँ इस सेगमेंट में कहानी के जरिए मिलती है उसको बस गांठ बांध के रखें, कुछ भी समझ में फेर हो रहा है तो संजीव जी को कॉल कर लें, 416-843-7600। थैंक यू संजीव जी।
0: थैंक यू सो मच जी।
2: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show, call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: अब फायदा उठाएं जून के हॉट हॉट रेट्स का विद अमित खुराना। 3 years fixed 4.19%, 5 years fixed 4.24%, 5 years variable 3.55%, साथ ही मिले $5,100 तक का हॉट हॉट कैशबैक भी, और इतना ही नहीं एक गिफ्ट कार्ड भी up to $1,500, है ना आइसिंग ऑन द टॉप। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, 6473412785, और विजिट amitkhurana.com।
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: काव्या होम्योकेयर। काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, 6477602779, 6477602779.
2: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

such a cheesy but must-must track. Well, ये recreated version था of मोहरा film का original hit track. The film जिसके गाने भी उतने hit हुए थे जितने कि the film was. हालांकि not many people know कि it was an unofficial remake of 1987 की Hollywood film जिसका नाम था Death Wish for the Crackdown. और last में जो थप्पड़ वाला scene था ना वो Hong Kong की film Hard Boiled से चुराया गया था. और background music, well वो भी most of the part में Terminator 2 Judgment Day की exact copy रखा गया था. तो formula fit था तो film भी hit हो गई थी और आज release भी हुई थी. और आज के दिन released was I Hate Love Stories कुछ साल पहले, जिसमें hate करने लायक तो जैसा कुछ नहीं था क्योंकि love story थी, visually pretty थी, musically peppy भी थी और बहुत सारी करण जौहर फिल्म से inspired भी थी. पर पब्लिक डिडंट लव दिस लव स्टोरी बहुत ज्यादा. गाने पर गाने जो थे दे वर डेफिनेटली टॉप ऑन चार्ट्स, बजते आज भी हैं.

पहुंचाना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट फिल्मी नुक्कड़ .com।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353. Winters में हमारे vehicles थोड़ी extra care और maintenance मांगते हैं और उसके लिए go to My Mechanic Auto and Tire. सभी तरह की mechanical repairs और tire services के लिए आप वहाँ किसी भी oil change और services के साथ get a complimentary winter maintenance inspection. Get a $20 off on all synthetic oil change services. Michelin tires के authorized dealer हैं ये. And you can get up to $150 rebate जब आप 4 नए tires खरीदते हैं. Insurance से ये direct deal करते हैं. Visit their Markham store at Midland and Steels और Scarborough store Midland and Elsmere पर. For details, visit mymechanicauto.ca.
3: Another Don clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
6: Say whoa! अपना पहला घर खरीदना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है? इस सेमिनार में होंगे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स एंड PK सबरवाल. Enjoy exclusive incentives, complimentary breakfast and lunch. 26 जुलाई 2026 को होने जा रहा है.
7: बहुत सारे incentives जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है.
6: लिमिटेड सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर कीजिए विद न्यू जेन रियल्टी एक्सपर्ट 6472994757, 6472994757, teamsabarwal.com.
8: Real

guys, we are in the middle of the year now. 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाकी हैं. तो जोर दिया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है अबाउट द रिजोल्यूशंस जो हम सब ने रखे थे साल के शुरू में. हमने वादे किए थे खुद से, कुछ किए थे ना कि क्या हुआ उन वादों का, कहाँ तक पहुंचे भाई, कुछ सफल भी हुए या नहीं, चल भी रहे हैं अभी वो, या बस कुछ दिनों में ही फुस से भी हो गए थे और खत्म. आंकलन तो कीजिए कि अगर वो कहीं पीछे छूट गए हैं तो वापस उन्हें पकड़े, नई सिरे से नई शुरुआत करें. इट वॉज रिजोल्यूशन रिन्यूअल डे यस्टरडे, रिमाइंडिंग अस ऑल कि वादे अगर टूट भी गए हैं तो भी क्या, दिल थोड़ी है जो जुड़ ना सके. सो ऑन दिस, आजकल तो टूटे दिल भी जुड़ जाते हैं भाई, बस साथ सही मिले गर वाली नोट. दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद द थॉट कि जो हो गया वो हो गया, जो आगे है उस पर फोकस करें, बस उसे ही ठीक करें तो भी चलेगा. हाँ, मिलते हैं फिर कल, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू.

0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम 24 घंटे में निशा रेडियो पाकिस्तान डॉट एफएम पर सुन सकते हैं। हमारे टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी जो तमाम आईपीटीवी बॉक्सेस जादू बोल जूम बस के साथ साथ एपल टीवी अमेज़न फायर टीवी रोकू टीवी के साथ साथ टूबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पर भी निशा देख सकते हैं। हमारी ये नशरियात अब आप हमारे टेलीविजन चैनल पर भी देख भी सकते हैं, यानी सीएमआर 101.3 एफएम पर जो प्रोग्राम हो रहा है या आप सीएम हमारी जो टोरंटो 360 टीवी है उस पर आप देख भी सकते हैं। रेसिट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तला भट्टी 6472957861 6472957861। बाबुल इल्म मस्जिद अली बनी हाशिम सोसाइटी 900 इंग्लैंडन एवेन्यू मिसाका के ज़ेर एहतमाम 14 से 20 मुहर्रम तक खुसूसी मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब मजालिस पढ़ेंगे और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप मस्जिद के लिए भी और जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसके लिए आप इन्हें स्पॉन्सर भी करें और हज ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट करें। 3 ड्रॉज होंगे, 3 कपल्स जो हैं वो हज के लिए जाएंगे और इसमें जब 1000 पार्टिसिपेंट हो जाएंगे तो ये ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये पार्टिसिपेशन है और $500 पार्टिसिपेशन फ़ी है, आप इसमें ज़रूर शिरकत कीजिए। इसके अलावा इनकी जो फ्यूनरल मेंबरशिप है वो 30th सफर तक जो है वो जारी रहेगी। फ्यूनरल मेंबरशिप स्टार्टिंग फ़ी जो है वो $500 एनुअली है और अंडर 18 केयर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मुश्ताक जादी साहब 416-985-0293 416-985-0293। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम में आपको होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।
1: You are listening to Radio Pakistan.

0: any real estate need. Call me at 416-300-5600.
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा। Information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
2: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 Pape Avenue.

0: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में. Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर. चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, chicken tikka masala, chicken biryani, seekh kebab, rishmi kebab, chicken boti, chicken tikka, bihari kebab, lamb chops, afghani tikka, nehari और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga.
1: मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी. अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मिठा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है. बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी. मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज और लंदन ओंटारियो की पांचों लोकेशंस पर ब्रांडेड ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी. फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट. दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ. पांचों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810. 416-901-2810. Your login ho mithafurniture.com. Har hafte special deals ka fayda uthaiye. Mitha Furniture. Har tarah ka furniture wholesale price par.
2: जी हाँ, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पे आपको मिलता है. पांच लोकेशन सब इनकी. मिसागा लोकेशन 3050 वेगा बुलेवार्ड, ब्रामटन लोकेशन 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट, 1319 कैनेडी रोड स्कारब्रो, 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज, और लंदन ओंटारियो की लोकेशन 3075 वुडलैंड ड्राइव, वंडरलैंड ड्राइव साउथ, वंडरलैंड रोड साउथ, यूनिट डी है. अच्छा, जब पांच लोकेशन हो तो आपको बहुत सामान चाहिए होगा और बहुत सामान बल्क में आएगा, और बल्क में आएगा तो कंटेनर्स में आएगा, जब कंटेनर्स में आएगा तो कुछ सस्ता मिलेगा, बार्गेन करके लाएंगे तो वही प्रॉफिट आप पे ट्रांसफर कर देते हैं. क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलती है. जितने मर्जी आप ब्रांड नेम ले लें, आप इनके पास जाएं, फर्नीचर आपको लेना है थोड़ी देर बाद भी लेना, तो एक दफ़ा आप मीठा फर्नीचर जरूर तशरीफ ले जाइए. 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट आपको मिलेगा. फोन मीटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल में सुनेंगे. मीटर साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो.
3: थैंक यू भट्टी साहब, ऑलरेडी सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर है. चार पांचों लोकेशन से आपकी सेवा करते हैं और आप बताते रहते हैं. बिल्कुल धन्यवाद आपका भी कि हाँ, बिल्कुल और कोई जादू की छड़ी नहीं. हर बहन भाई कोई भी कोई बिजनेस कर रहा है, वो कैर क्लेम कर रहा है कि मेरे से सस्ता और कोई दुनिया नहीं दे सकती. तो मतलब हम यह नहीं कह रहे कि हमारे से सस्ता कोई और नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कम लोग उतना वॉल्यूम होता है जिनकी बड़े चेन स्टोर होते हैं. वो जैसे वो हैं बड़े, जो बड़े बड़े कारपोरेट बड़े स्टोर हैं, तो उनका प्रॉफिट, उनके खर्चे भी हो सकते हैं कारपोरेट लेवल पे ज्यादा, उनका मार्जिन ज्यादा है. तो मैं मतलब रेडियो पे नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सब समझते हैं जो बड़े कारपोरेट स्टोर उनका मार्जिन ज्यादा, और हमारा फैमिली बिजनेस होते हैं मार्जिन कम है. लेकिन जब इंडिविजुअल स्टोरों से आप कंपेयर करते हैं कि जिसका किसी का एक, किसी बहन भाई का एक है, दो है, तो फिर वो वॉल्यूम जब हमारे भी थे, जब एक थे, दो थे, तीन थे, तो क्योंकि आपको कंटेनर, भट्टी साहब कंटेनर तो लिया जा सकता है, लेकिन उसकी स्टोरेज का खर्चा आता है कि अगर आपका आउटपुट वो निकासी नहीं हुई, मान लो वेयर हाउस का खर्चा आपको लगता रहा, वेयर हाउस का खर्चा लग रहा, तो वो तो फिर और महंगा पड़ जाता है आपको. तो आपका ऋणी है कम्युनिटी के कि आप कितना प्यार देते हैं, और वही हमें जो आपने कहा कि वॉल्यूम डिस्काउंट या जो बचत आपकी वजह से होती है हम आपको वापस कर देते हैं. बिल्कुल हर दुकानदार, एक इंडस्ट्री का एक सेट मार्जिन होता है, 15-20% मार्जिन है, ग्रोस मार्जिन जो होता है, सभी के कोई खर्चे होते हैं, हमारे भी हैं, वो हर दुकानदार कमाता है, हम भी कमाते हैं, रीजनेबल कमा के देते हैं, लेकिन जो बचत एक्स्ट्रा जो होती है वो आपको दे देते हैं.
2: सही.
3: अभी पहला स्टोर है जो कहता है ये मॉडल नंबर है, आप प्राइस है, आप कंपेयर कर लो. मैं माफी मांग रहा हूँ, किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन आपको अपना बनाने के लिए सब ऑनेस्टी ये जो आपके सामने रख रहे हैं. और जैसे अभी कनाडा डे है भट्टी साहब, तो मैंने कनाडा डे कल था, तो हमें बहुत गर्व है, चाहे आप कहते लहंदे पंजाब, चढ़दे पंजाब, या आप वर्ल्ड के किसी कोने से हम जो इमिग्रेंट लोग आए हैं, हमने मेहनतें भी बहुत करी हैं, लेकिन इस जन्म, मतलब ये जो कनाडा हमारी जन्मभूमि तो नहीं हो सकता, हमारे बच्चों की
2: है
3: जन्मभूमि, लेकिन इस भूमि ने, इस धरती ने हमें मान सम्मान रोटी रोजी बहुत अच्छी से दी है. तो आई थिंक हम सारों को इस पे गर्व होना चाहिए, जितना गर्व हमें हमारी जन्मभूमि पे है जहाँ भी हम पैदा हुए. नो डाउट अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं आपको उसको बहुत प्यार करता हूँ, आप पाकिस्तान में है तो ये सिर्फ नाम है, लेकिन हमारी जन्म धरती जहाँ पे है हम उसको प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये हमारी कर्म भूमि है जहाँ पे हमने मेहनत, हमने बिल्कुल नो डाउट हमने मेहनत, हम सभी ने मेहनत करी है, लेकिन हमें इसने नवाजा है, मतलब अपने कहते हैं ना अभी हर चीज से हमें नवाजा है. तो सलूट टू ओ कनाडा, मतलब हम कनाडा को भी सलाम करते हैं, पूरा सलूट करते हैं. पर कनाडा डे है तो फिर ये देखो डील के ऊपर डील दे रहा हूँ. 2779 हमारा एक बेड है, हमने एशले का, हमने क्वीन साइज बेड, अकेला हाई एंड फर्नीचर में बचत होती है, 1199 का लगाया हुआ है. पहला नंबर तो 1199 बाजार से 600-700 डॉलर सस्ता है, आप कंपेयर कर लें। अब कनेडा डे की खुशी में, क्योंकि कनेडा डे कल गया और पूरा वीकेंड इसको मनाएंगे हम, संडे तक 10% और कम करके देंगे, मतलब जो हम कमा रहे थे 15-20 मिनट में, कह रहा हूँ कमाते हैं, उसमें से और 10% आपको कम करके देंगे। अकेले एक बेड की नहीं, कोई भी हमारी आइटम को 10%, चाहे वो एडवर्टीज कर रखी है, चाहे कॉस्ट पे लगा रखी है, कुछ भी कर रखा है, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको करके देंगे। तो हम चाहते हैं आप एक बार आएं, और ये सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, आप आएं तो सही, अजमाएं तो सही, क्योंकि हर कस्टमर को, मैं भी अगर आपकी जगह सुन रहा हूँ, आपको लगता है कि हाँ जी ठीक, भट्टी साहब भी बोल रहे हैं, बेटा साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या पता हर कोई ऐसे ही बोलता है। तो फैमिली रूम में बैठ के जब बात होती है, कहते हर कोई ऐसे ही बोल रहा होता है, मैं कहता हूँ जी हाँ, हर कोई ऐसे बोल रहा होता है, पर जो हम बोल रहे हैं उसको आप अजमाएंगे, और जब आपके टेस्ट में हम पास हो जाएंगे, फिर तो आप भी अपना वैल्यूएबल बिजनेस हमें देंगे, क्यों नहीं देंगे, जब आपको टेस्ट हमारा ले लेंगे और पास होंगे, और हमें पूरा मान है कि हमने जो पढ़ाई कर रखी है, मतलब हमने जो आपको बता रहे हैं कि वो हमारा, हम जरूर आपके टेस्ट में पास होंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं आए तो सही, अजमाए तो सही, बनाए तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810, ब्रम्पटन, मिसिसागा, स्कारबरो, कैम्ब्रिज और लंदन से आपकी सेवा करते हैं। थैंक यू वेरी मच,
2: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू, मतलब सामी नंबर नोट कर लें, 416-901-2810, 416-901-2810, mitafurniture.com इनकी वेबसाइट है। आज की शायरी आपके लिए पेश करेंगे, पीटीआई ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है, आगे चल के से बात करते हैं, इस वक्त पेश कर रहे हैं आज की शायरी।
4: है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, मैंने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, हमसे कहते हैं वही अहद वफा याद नहीं, कैसे भराई सरे शाम किसी की आंखें, कैसे थर्राई चरागों की ज़िया याद नहीं, सिर्फ धुंधलाए सितारों की चमक देखी है, कब हुआ कौन हुआ किससे खफा याद नहीं, जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, आओ एक सजदा करें आलमी मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं।

0: रेड पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम रहीमशाह खूबसूरत आवाज रहीमशाह 14 अगस्त को परफॉर्म कर रहे हैं मिसाका में। बदरमणि चौधरी साहब ये प्रोग्राम आजादी का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जरूर आप इसको अटेंड कीजिएगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खमेनाई की नमाज जनाजा के लिए इंतजाम की तैयारियां जारी हैं। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी रवाना हो रहे हैं उनके जनाजे में शिरकत के लिए, और तेहरान के जनूबी इलाके में वाकई इमाम खमेनी हुसैनिया में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। 28 फरवरी को तेहरान पर बमबारी करके उन्हें शहीद कर दिया गया था। हमले में आयतुल्लाह खमेनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खमेनाई की अहलिया भी शहीद हुई थी। जहरा हदाद आदल के एजाज़ में तेहरान के फरहंग स्कूल की जानिब से बुध की शब ताज़ती इज्तिमा भी हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। और ईरान ने इसराइल और अमेरिका को इंतबाह किया है, मुतनबे किया है कि किसी भी उसके हमले या जारहियत की सूरत में सख्त जो है जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147 6472714147। याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
1: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन, 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन, 9052325678।
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रबते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550 746-5550।
7: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
8: अपना हम सफर, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर।
9: ग्लोबल
8: ट्रेवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं. आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं. पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं. बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट. उम्रा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555.
9: 918 Dundas Street East, Unit 1C, Mississauga.
10: Vishal Trivedi, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट. अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस. कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस. कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852. That's 6477679852. Vishal Trivedi.
0: रेड पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. अब खबरें आपके लिए 7:30 बजे हम पेश किया करेंगे. और जिस कल जिक्र किया था, कल क्योंकि कैनेडा डे था तो शायद लिसनिंग भी कम थी. हम 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक अपना जो हमारे सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक है और फेसबुक है, उसके ऊपर जो है हम कॉल्स लेंगे. सेम नंबर होगा, वही तरीका जैसे पहले कॉल्स लेते थे. और टॉपिक उसमें होगा, बिलाल साहब नहीं होंगे, ज़ाहिर उनसे क्वेश्चन नहीं होंगे, वो लंबा हो जाता काम. हमने आज का मैं टॉपिक भी आपको बता देता हूँ कि पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का जो है बायकॉट का ऐलान किया है. और इसके साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक कि आप ये बताइए कि जो 12 महाजरीन की नशस्तें हैं, क्या उनको ख़त्म कर देना चाहिए आज़ाद कश्मीर में. खबरें अब 7:30 बजे जो है आपके लिए पेश किया करेंगे. तो आपको ले चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जो आपके लिए पेश कर रहे हैं जनाब ज़ुबैरुद्दीन साहब.
11: You're listening to CMR FM 101.3.
12: News के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने.
13: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
0: न्यूज के लिए तावन देते हैं आईकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आईकॉन इवेंट स्पेस के साथ. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500. इट्स 4374252500. आईकॉन इवेंट स्पेस.
12: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861. 6472957861.
14: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम. ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है. अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए. कतर की जानिब से दावा किया गया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान दोहा में जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की तथलीन के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे. उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ कल ईरान और तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे, जहाँ वो आयतुल्ला खामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे. दूसरी जानिब ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से मुकर्रर करदा बहरी रास्तों से इन्हिराफ या ईरान के जवाबित को नज़रअंदाज करने वाले जहाजों की सलामती खतरे में पड़ सकती है.

0: and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: जी हाँ, 416-625-2636 आर्म लॉ ऑफिस का हॉटलाइन नंबर है, जहाँ लॉयर जाल के आपको जवाब देते हैं। खुदा न खास्ता आप एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हों, गिर गए हों, स्लिप एंड फॉल, आप कॉल कर लीजिए। हमारी कम्युनिटी की सबसे बड़ी लॉ फर्म है इस हवाले से, एक्सीडेंट क्लेम के हवाले से। इसके अलावा आलम लॉ चैम्बर आपको हर तरह की कानूनी मदद फराहम की जाती है। आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदेद कहेंगे। आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी
1: भाई, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट, हम तकरीबन दो एक हफ्ते से इसी पे बात कर रहे हैं, जो चेंज आया है, जो इंश्योरेंस के जो थोड़े से कवानीन चेंज हुए हैं, थोड़ा सा उस पर अपडेट दे दिए, क्योंकि 1 जुलाई से तो वो नाफिज हो गए हैं। क्या चीज़ें, अगर क्योंकि बहुत से लोगों के शायद नाम भी अभी तक रिन्यूअल आई हो, तो क्या चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए लोगों को?
2: जी बिल्कुल, July 1, 2026 के बाद कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपकी रिन्यू हो रही है, तो उसमें जो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड बेनिफिट्स अवेलेबल हुआ करते थे, वो सारे बेनिफिट्स अब खत्म कर दिए गए हैं। यानी कि आपके पास इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट, नॉन अर्नर, हाउस कीपिंग, डेथ बेनिफिट्स, इवन के आपका कैटास्ट्रोफिक इंजरीज भी हो जाए, तो ये सारे बेनिफिट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। और अगर आप कोई एड ऑन नहीं लेते हैं, यानी कि अगर एडिशनल बेनिफिट्स नहीं लेते हैं ईच इंडिविजुअल आइटम्स के, और आपकी आप या आपकी फैमिली अगर इन्वॉल्व हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उनके पास कोई कवरेज भी मौजूद नहीं होगा। इट्स अ वेरी बिग मैसिव चेंज, जिसका जाहिर सी बात है कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आपको उस वक्त भुगतना पड़ेगा जब आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपके पास इंश्योरेंस की कवरेज मौजूद नहीं होती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक माफिया है, जो कि पिछले 16 साल से एग्रेसिवली जो है वो आपके बेनिफिट्स को कम किए जा रही है, लेकिन आपका प्रीमियम जो है वो हर साल बढ़ता जाता है और बेनिफिट्स आपके हर साल घटते जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपने पॉलिसी को रिन्यू करें, तो इंश्योर कर लें कि आपके पास कुछ ऐसे स्पेसिफाइड बेनिफिट्स होना लाजमी है, भले से आपको $15-20 जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़े। यानी कि अगर कहीं आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो कोशिश करें कि आप इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट की बेनिफिट जो है वो अपने पास एड ऑन जरूर करें। बाकी थोड़ी मोड़ी बेनिफिट जो है वो अगर ना भी करें तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट एड होना जरूरी है आपकी पॉलिसी पे। खुदा ना खास्ता आपके साथ या आपके बच्चों के साथ या फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाए एक्सीडेंट पे, तो आपके पास कवरेज मौजूद हो।
1: ठीक,
2: जब भी आप पॉलिसी रिन्यू हो, तो इंश्योर करें कि अपने ब्रोकर के साथ, अपने एजेंट के साथ वो पॉलिसी को सही तरीके से आप रिव्यू करवा लें।
1: सही।
2: और देखें आपकी बेनिफिट, आपकी फैमिली के लिए जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो फिजिबल है।
1: वही राइट, यानी कि जब ये 1 जुलाई से लागू हो गया, लेकिन जब जब जिस तरह लोगों की रिन्यूअल आएगी, उस वक्त से वो उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, तो उससे जब भी हो तो उस वक्त उनसे बात कर। ठीक हो गया। 416-625-2636 नंबर। अच्छा, अब ये जब नए कानून आ गए, बहुत सारी चीजें ऐसी, अक्सर औकात हमने देखा कि लोग अपनी इंश्योरेंस कम करने के लिए एड्रेसेस जो है वो चेंज कर लेते थे, कहीं और का देते, तो फिर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मामले में, ये भी चीज सामने आ सकती है, क्योंकि ये ट्रैक तो इजीली हो जाता है।
2: एब्सोल्युटली, एड्रेस चेंज का मसला ना सिर्फ इस लेजिस्लेशन के हवाले से, बल्कि इवन के बिफोर दिस लेजिस्लेशन बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को रेट्रोएक्टिवली मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर कैंसिल कर सकती है। आप सालों से उनको प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन आपकी एक गलती, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी इसको इन्वेस्टिगेट करके आपके पॉलिसी को डिक्लाइन कर देती है, बैक डेटेड, तो आपकी ना ही गाड़ी बनेगी, ना आपकी इंजरी का क्लेम एंटरटेन होगा, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप फॉल्ट पर हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको डिफेंड भी नहीं करेगी मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए। तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए प्लीज ये गलती ना करें। पहले 15-20 साल पहले इंश्योरेंस कंपनी पूछती नहीं थी, लेकिन अब ये एग्रेसिवली आ रहे हैं, और आप जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है, और आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि आपसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं कि आप उस डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट नहीं कर सकते,
1: इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, 416-625-2636 रابطے کے نمبر। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद अब आजकल पुलिस बहुत देर से आती ही नहीं है, तो क्या एडवाइजेबल है कि फौरन कोलिजन सेंटर लाजमी जाया जाए और रिपोर्ट की जाए वहां पे?
2: सबसे पहले तो दूसरी पार्टी की इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन ले लें, एक्सचेंज कर लें उसके ओनरशिप की इंफॉर्मेशन, अगर किसी विटनेस से देखा है तो नाम नंबर रखें अपने पास और गाड़ी की पिक्चर ले लें। बाद अगर दूसरी पार्टी जो है वो कोलिजन सेंटर आपके साथ नहीं जाना चाहती है, जाती भी नहीं है, तो आपके पास एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है दूसरी पार्टी की। तो राइट अवे फ्रॉम द सीन ऑफ इंसिडेंट अगर पुलिस नहीं आई है, कोलिजन सेंटर में जाके रिपोर्ट करें, आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, और कोलिजन सेंटर में उस इन्फॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करें दूसरी पार्टी की आपने इन्फॉर्मेशन चीज पे।
1: वेरी राइट, 416-625-2636 हॉटलाइन नंबर है जहां लॉयर्स आपकी कॉल का जवाब देते हैं। और आखिर में जो नॉन एमएस मैटर्स है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसको भी टच बेस कर लें आलम लॉ चैम्बर के हवाले से।
2: जी बिल्कुल, नॉन इमरजेंसी मैटर के लिए यानी कि रियल एस्टेट की क्लोजिंग हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉ, हाईवे ट्रैफिक एक्ट, विल्स एंड एस्टेट के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आलम लॉ चैम्बर एट 905-564-5953।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब भाई, नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आलम ऑफिस का नंबर नोट करें, हॉटलाइन नंबर है 416-625-2636। माहिरीन ने अहम हिदायत दी है कि पूरा दिन खून में शुगर मुतवाजन रखने के 6 आसान तरीके हैं, क्या है थोड़ी देर में बात करते हैं।

0: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
2: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स। ओवर 10,000 फैमिलीज अक्रॉस कनाडा rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam मेजर रिपेयर वर्क करते हैं, बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड एसी सर्विस। 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। एसएसआर ऑटो रिपेयर, कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन 6473217444। इट्स 6473217444।
3: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेस। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन, मिसिसागा में। 9052829868।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782, 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस, 921 पेप एवेन्यू।
3: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स। ओवर 10,000 फैमिलीज अक्रॉस कनाडा रिलाई ऑन MWC फूड बैंक्स टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वी सर्व इन स्कारबोरो, मिसिसॉगा एंड इन फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज। चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। प्लीज donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
4: तो चलिए जनाब, हमें दीजिए इजाजत, दुआ में रखिएगा याद, हौसला निहारना, बल हौसला भी कहने की चीज, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर। मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-माला।